0: Financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
1: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal, or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
2: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
3: Call 857-891-8942 today.
4: Aaj se aaj, straight from the heart. Kal Hindi Hindi bol.
5: You know my voice on the radio. Now let me be a voice you can trust in real estate. Main hoon Navneeta Khemka, realtor with Keller Williams Realty. Buying, moving or selling a home? I bring market knowledge, creative marketing and personal commitment to your journey. Because to me, real estate isn't just about properties. It's about you, mere dosto, your possibilities and your new beginnings. Every home has a story. Let's create yours together.
6: Call Navneeta Khemka at 347-449-4242.
4: Phone uthaiye, number dabaiye. 347-449-4242.
7: Hello, Weekend Lunch Emergency Helpline. How may I help you?
8: Hello, mere relatives aa rahe hain. Everyone's asking lunch mein kya hai?
7: Fikar not. We have the perfect solution.
9: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special. 25-plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
10: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
11: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
12: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
13: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
12: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
14: फैमिली को चाहिए नॉर्थ इंडियन, फ्रेंड्स को साउथ इंडियन, अब जाए तो जाए कहाँ?
15: सिंपल, बसेरा ग्रैंड, वन डेस्टिनेशन, डबल द फ्लेवर।
16: मतलब क्रिस्पी गोल्डन डोसा?
15: यस, रिच नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स, फ्लेवरफुल लोडेड बिरयानी और एक डिलिशियस बुफे जहाँ चॉइसेस ही चॉइसेस हैं।
16: वाओ, ग्रेट फूड, फुल वैरायटी एंड एवरीवन्स हैप्पी।
14: फैमिली डिनर हो या फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशन, मेक एवरी मील ग्रैंड एट बसेरा ग्रैंड। बसेरा ग्रैंड, कम हंग्री, लीव हैप्पी टुगेदर।
17: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय करूंगी।
18: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
19: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
18: Now sir, or price?
19: Up to 25% off on lehengas and bridal collection. Summer sale through the end of August. Only at Indian Attire Frisco. Traditional ho ya fusion, ab har outfit bolega.
9: I am Rahat Fateh Ali Khan and you are listening Radio Fun Asia.

आप सुन रहे हैं फनेशियर रेडियो 104.9 एफएम और मैं हूँ आरजे सिमी। अभी हम एक सॉन्ग सुन रहे थे, बदतमीज दिल। और क्या करे यार, मतलब दिल बदतमीज हो या जैसा भी हो, अपना ही है और ध्यान भी रखना पड़ेगा। और सिर्फ दिल का ही नहीं, पूरे बॉडी का, पूरे हेल्थ का अपने ध्यान रखना चाहिए हम सबको। और इसमें ना आपकी मदद करते हैं पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है, हेल्थ इंश्योरेंस, या फिर आपका जो करेंट नेटवर्क है उससे पैशन हेल्थ आउट ऑफ द नेटवर्क है, मतलब इंक्लूडेड नहीं है, तो भी टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपको अफोर्डेबल प्राइमरी केयर मिलेगा विद देयर प्रोग्राम कॉल्ड एज पैशन हेल्थ डायरेक्ट। और ये चार्ज करते हैं आपको ओनली $85 अ मंथ। और इनके सारे सर्विसेज जो इसमें इंक्लूड होते हैं वो हैं प्राइमरी केयर, प्रिवेंटिव केयर, मेडिकेशन मैनेजमेंट, टेली हेल्थ, और भी बहुत सारे हैं जो आप उनसे बात करके उनके सर्विसेज के बारे में जान सकते हैं। नंबर मैं आपको बता देती हूँ, आप कॉल या टेक्स्ट कर सकते हैं @214666259, या फिर आप उनके वेबसाइट पे भी जाइए विच इज passionhealthphysicians.com। वैसे मैं बता दूं कि ये प्रोग्राम ना हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, और कुछ एलिजिबिलिटी रिस्ट्रिक्शंस भी हैं जो आपको जरूर चेक कर लेना चाहिए। एंड विद दिस वी आर क्लोजिंग अवर सेगमेंट जहां पे हम बात कर रहे थे सेटल होने के बारे में, और कुछ क्लोजिंग लाइंस बोल देती हूँ इसके पहले कि वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट, कि अगर आप अभी भी सेटल्ड फील नहीं करते तो भी कोई बात नहीं है जी, आपकी जर्नी अभी भी चल रही है। और अगर आप सेटल फील करते हैं तो भी आपको नए ड्रीम्स देखने रहना चाहिए, खुद को हमेशा इंप्रूव करते रहना चाहिए। और लाइफ में कोई फिक्स डेडलाइन नहीं होती, किसी का टाइमलाइन 25 इयर्स हो सकता है, किसी का 35, किसी का 45, आपकी लाइफ ना आपकी है। आपका सेटल होने का डेफिनेशन या सक्सेसफुल होने का डेफिनेशन भी आप ही डिसाइड करोगे, तो अपनी जर्नी किसी और के टाइमलाइन से कंपेयर मत कीजिए।

देखिए हीरो नंबर वन तो गोविंदा है, लेकिन लॉयर नंबर वन ना ओमर ख्वाजा है। चाहे आप फंसे हैं किसी कार या ट्रक एक्सीडेंट में, या आपके जानने वालों में से किसी को चाहिए कि कोई आपकी तरफ से जो है केस लड़े, इंश्योरेंस वगैरह की टेंशन झेले, तो आप जरूर अटर्नी ओमर ख्वाजा को रीच आउट कर सकते हैं। और ये आपके लिए लड़ेंगे तो सही, पर उसके अलावा तब तक आपसे चार्ज नहीं करेंगे जब तक कि वो केस नहीं जीत जाते। आप उन्हें कॉल कर सकते हैं 4693005046, या फिर आप उनके वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, विच इज attorneyomer.com। और हम अभी बात कर रहे थे हीरो नंबर वन की, फिर हमने बात की लॉयर नंबर वन की, पर रेडियो नंबर वन तो फनेशियर रेडियो ही है, 104.9 FM। और मुझे हीरो या हीरोइन नंबर वन का नहीं पता, लेकिन मैं ड्रामा क्वीन जरूर हूँ। आई एम गोना प्ले नेक्स्ट ड्रामा क्वीन, और उसके बाद मैं लेके आऊंगी आपके लिए गिव अवे राउंड। सो स्टे ट्यून विद फनेशियर रेडियो। You know she-

चलिए अब मैं लेके आ गई हूँ आप सबके लिए गिव अवे राउंड, तो तैयार हो जाइए। मैं एक सवाल पूछूंगी और अगर आपने सही जवाब दिया तो आप जीत सकते हैं फन पिज्जा किचन की तरफ से $10 का गिफ्ट कार्ड। और फन पिज्जा किचन में ना बहुत सारे मेक्सिकन इंस्पायर्ड पिज्जा मिलते हैं फुल ऑन फ्लेवर फिएस्टा के साथ। आप अगर यहाँ जाएं तो जरूर ट्राई करें फिएस्टा वेजी, पोलो लोको या फिर सी फूड पैक्स और कैमरॉन, और भी बहुत सारे पिज्जा स्टाइल्स हैं भाई, आपको तो जाना ही पड़ेगा, मेन्यू चेक करना ही पड़ेगा। फिलहाल मैं आपसे सवाल पूछ लेती हूँ। आई विल गिव यू 3 clues और आपको बताना है कि मैं किस एक्ट्रेस की बात कर रही हूँ। ओके, तो जो पहला क्लू है वो ये है कि उनकी डेब्यू मूवी जो थी वो थी रॉक ऑन, और उनका डेब्यू टीवी सीरियल था कसम से। और जो थर्ड क्लू है वो आपको नेक्स्ट सॉन्ग में मिलेगा, आपको सुनना पड़ेगा। और आप मुझे कॉल कर सकते हैं एट 972-235-5555 पे और मैं आपका सही जवाब का ओ माई गॉड आई एम ऑलरेडी गेटिंग द कॉल्स ओ माई गॉड गाइज आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो यार, लेकिन मुझे गाना तो बजा लेने दो।

ऑल राइट, हमें हमारा विनर मिल चुका है और आज के जो विनर है उनका नाम है विभोर गुप्ता. कॉन्ग्रेचुलेशंस विभोर, आपको मिला है फन पिज्जा किचन की तरफ से $10 का गिफ्ट कार्ड. टू सो डू गो देयर, एंजॉय द अमेजिंग एंड क्रेजी टेस्टी पिज्जास फ्रॉम देयर. एंड थैंक यू सो मच गाइज, आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने कॉल किया, सब ने सही जवाब दिया, बहुत सारे कॉल्स आए. आई गेस आई रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम संदीप, स्मिता, स्निग्धा, मिलिंद और भी लास्ट में कुछ कुछ कॉल्स आए थे. बट आज के हमारे जो विनर हैं विभोर, आपकी खुशी में हम सब अभी नाचने वाले हैं. ओके, आई एम गोना प्ले द नेक्स्ट सॉन्ग एज लेट्स नाचो.

0: वैसे हमारे लिसनर्स के लिए मैं ये बता देना चाहती हूँ कि जो लास्ट गिव अवे का क्वेश्चन हमने किया था उसका सही जवाब है प्राची देसाई। उन्होंने रॉक ऑन मूवी से जो है बॉलीवुड में कदम रखा था और उसके पहले वो काफी सारे टीवी सीरियल्स में आ चुकी हैं, जिसमें से उन्होंने लीडिंग एक्ट्रेस का जो है रोल प्ले किया था इन दिस शो कसम से। उसके बाद वो दूसरे मूवीज जैसे कि अजहर, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में भी दिखी एंड पीपल रियली लाइक्ड हर। फिलहाल आई थिंक शी इज नॉट वेरी एक्टिव और आज उनका बर्थडे है बाय द वे, सो हैप्पी बर्थडे टू हर।
1: रेस्टोरेंट चूज करना हो, गूगल रिव्यूज। होटल बुक करना हो, गूगल रिव्यूज। लेकिन बच्चों के डॉक्टर की जब बात आए तो एक ही रिव्यू सबसे इम्पोर्टेंट होता है, माँ का रिव्यू।
2: इसलिए डॉक्टर फरहाद हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ DFW चाइल्ड मॉम अप्रूव्ड पीडियाट्रिशियन फॉर 4 कंसेक्यूटिव इयर्स 2023 थ्रू 2026। मीट डॉक्टर निशात फरहाद एट पैशन हेल्थ पीडियाट्रिक्स, सर्विंग फैमिलीज एट फ्रिस्को एंड ऑब्री, स्टार्टिंग एट द एंड ऑफ ऑगस्ट। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, बिकॉज एवरी हेल्दी स्माइल बिगिंस विद ट्रस्टेड केयर। कॉल 214-666-6259 एंड शेड्यूल योर अपॉइंटमेंट्स टुडे।
3: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
4: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
3: Kya matlab?
4: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
3: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
4: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
3: Ab to karna hi padega, madam.
5: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
6: जीनी हुकम मेरे आका, हम आज पार्टी के मूड में हैं। एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो।
7: मिराज लाउंज चलिए मेरे आका, लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में हैं।
8: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं।
7: नो प्रॉब्लम आका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर।

0: आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए
1: और एंटरटेनमेंट,
0: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स, सब आपकी खिदमत में।
1: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
0: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे। मिरेकल्स हैपन इन मिराज।
2: इट्स ट्रू, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स Even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar Ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar Ji, 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
3: पनीर मंचूरियन का नाम तो सुना होगा, पर चिली पनीर बाओ कहानी में ट्विस्ट।
4: चिकन टिक्का पुरानी मोहब्बत, बट बुराडा चिकन टिक्का न्यू लव।
3: एंड पिस्ताचियो लैम्प चॉप्स,
4: फुल ऑन फ्लेवर का फ्यूजन।
5: That's Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irving. Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.
6: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
7: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
8: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
9: तुमसे मिलके दिल का है।
7: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
8: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क। इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये, इश्क इश्क है।

आप सुन रहे हैं फन एशिया रेडियो 104.9 एफएम और मैं हूँ आरजे सिमी। और आपके भी लाइफ में ना इतना ही मौजा ही मौजा रहना चाहिए भाई। आज तो सैटरडे नाइट है और वीकेंड पे मस्ती और धमाल नहीं होगा तो कब होगा। वैसे एक और ऐसे ही अमेजिंग एंड अनफॉरगेटेबल नाइट के लिए आपको तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि सोनू निगम आ रहे हैं अपना शो रेवोल्यूशन लेके इन डैलस। और ये हो रहा है ऑन सैटरडे, ऑन सितंबर 26th, 8:30 PM से स्टार्ट होगा एट क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर इन एलन। आपके फेवरेट सॉन्ग्स बजेंगे और वो आइकॉनिक वॉइस जो है ना, आप अपने सामने लाइव उनको एंजॉय कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने टिकट्स नहीं खरीदी हैं तो आप टिकट मास्टर पे चले जाइए, वहां पे आपको टिकट्स वगैरह मिल जाएगा, सीट अरेंजमेंट्स भी देखने को मिल जाएंगे कि आपको कौन से टिकट्स लेनी है। और ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप कॉल कर सकते हैं 855-360-SHOWS। और रेवोल्यूशन गाइस, अब सोनू निगम अपना रेवोल्यूशन लेके तो हर जगह चलते ही रहते हैं। और फन एशिया नेटवर्क जो है ना एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर है और सोनू निगम की इतनी सारी बातें हो रही हैं तो मैं हूं ना का टाइटल ट्रैक तो बचा ही देना चाहिए। इट्स वन ऑफ माय फेवरेट ऑफ सोनू निगम।

देखिए, आपकी प्रेम की नहीं है तो आप ही को पार लगानी पड़ेगी। उसके लिए मेरे पास कोई सोल्यूशन, कोई तरीका नहीं है। लेकिन अगर आप बिजनेस ओनर हैं और आपको एक स्मार्टर कमर्शियल एनर्जी सोल्यूशन चाहिए, यानी कि उसकी नैया पार लगानी हो, तो नैया भी है और किनारा भी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। और ये सर्व करते आए हैं टेक्सास बिजनेसेस को सिंस 2002 विद कॉम्पिटिटिव रेट्स, रिलायबल सर्विस एंड कस्टमाइज एनर्जी प्लान। तो आपको अगर ये सोल्यूशन चाहिए तो आप उन्हें कॉल कर सकते हैं एट 844-428-2808 या फिर आप उनके वेबसाइट पे भी जाइए, विच इज taraenergy.com।

आप सुन रहे हैं फन एशिया रेडियो 104.9 एफएम और मैं हूँ आरजे सिमी। अभी एक गाना प्ले हो रहा था, गुलाबी आंखें। भाई मैंने आज तक ना किसी को गुलाबी आंखों के साथ नहीं देखा है। मैंने जो है नीली देखी है, भूरी देखी है, काली आंखें देखी हैं और कभी कभी फोटोज में, नॉट इन पर्सन बट एटलीस्ट फोटोज में, हरी भी देखी है, पर ये गुलाबी आंखें तो नहीं देखी है। गाइस अगर आपने देखी है तो आप मुझे फोन करके जरूर बताइए कि कहाँ देखी है। सपनों की बातें करना अलाउड नहीं है, ठीक है। खैर अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट राउंड जो कि है एक गिव अवे। तो लेकिन अभी नहीं यार, एक बस एक गाना सुन लीजिए, उसके बाद मैं गिव अवे का क्वेश्चन लेके आऊंगी और हम खेलेंगे।

0: गाइस, अभी थोड़ी देर पहले मेरी और आपकी बातचीत हो रही थी और गुलाबी आंखें जो सॉन्ग चल रहा था उसके बाद मैंने आपसे पूछा था कि भाई मैंने तो गुलाबी आंखें नहीं देखी है, अगर आप लोगों ने देखी है तो मुझे बताइए। और कुछ लोगों ने कॉल किया और उनमें से एक का जवाब था कि पिंक आई होती है ना वो जो मेडिकल कंडीशन। मैंने कहा आप लोग काफी स्मार्ट हो यार, इसलिए तो मैं आप लोगों के लिए गिव अवे के क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग लाती हूँ। वक्त हो गया है कि हम डक टाइम का गिव अवे राउंड खेले। और डक टाइम जो है ना अपना पहला एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा है डैलस में, इसलिए वो आपके लिए बहुत सारे अमेजिंग सर्विसेज एट ग्रेट वैल्यू एट प्राइसेस लेके आए हैं। और अगर आप आज ये गिव अवे जीतते हैं तो आपको मिलेगा फ्री वेंट क्लीनिंग सर्विस फ्रॉम डक टाइम। और एक इनको जो क्लीनिंग होती है ना, प्रोफेशनल डक क्लीनिंग, इससे आपके सारे डस्ट वगैरह भी रिमूव हो जाएंगे, सारे जो क्लॉग्ड वेंट्स हैं वो क्लियर हो जाएगी, तो आपको एकदम ठंडी ठंडी अच्छी अच्छी हवा आएगी। और बहुत बार ऐसा होता है कि आपके डक्ट्स में क्लॉग्ड पोर ये वेंट्स वगैरह में हिडन फायर हजार्ड्स भी होते हैं, तो वो भी एक बार चेक हो जाएगा, ज़रूरी है। तो आपको अगर ये सारी सर्विसेज चाहिए तो आप डक टाइम पे जरूर जाएं। आपको कॉल करना है जीतू पटेल जी को और एट 9728772500 और आपको मिल जाएगी अपनी अपॉइंटमेंट फॉर अ क्लीनर सेफर एंड फ्रेशर होम। ठीक है, अब हम आते हैं अपने सवाल की तरफ। तो जो मेरा सवाल है आज का फॉर द गिव अवे वो ये है कि मैं आपको एक वर्ड दूंगी और उस वर्ड से शुरू होते हुए या फिर एटलीस्ट वो फर्स्ट सेंटेंस में आना चाहिए किसी गाने के, आपको मुझे तीन गाने बताने। ओके, कई बार ऐसा होता है ना कि आप लोग एक ही गाना बताते हो, तो प्लीज बी केयरफुल, आपको तीन गाने बताने हैं उस वर्ड से, तभी आपको मिलेगा ये गिव अवे। और आज का वर्ड है तुम। ओके, बहुत इजी है। ठीक है, और आज जो हमारा स्टूडियो का नंबर है वो है 9722355555।
1: एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

ऑल राइट, हमें आज के विनर मिल चुके हैं एंड थैंक यू सो मच टू एवरीवन जिन लोगों ने भी कॉल किया. बहुत सारे अमेजिंग सॉन्ग्स हमें जो है तुम वर्ड से सुनने को मिले और कुछ लोग तो इतना अच्छा गा रहे थे कि मैं यहाँ पे नाच रही थी. मतलब बहुत अच्छी आवाज़ है और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करना, स्पेशली अबाउट सॉन्ग्स एंड मूवीज. तो आज की जो हमारी विनर है वो है स्निग्धा. कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको मिलता है डक टाइम की तरफ से फ्री ड्राइव एंड क्लीनिंग. तो अभी जो फेस्टिवल्स वगैरह आ रहे हैं तो आपका घर तो मस्त क्लीन हो जाएगा उन जगहों पे भी जहां आपको प्रोफेशनल डक क्लीनिंग के हेल्प चाहिए. और बाकी लोग अगर आपको भी चाहिए ये सर्विस तो आप जीतू पटेल को कॉल कीजिए 9728772500 और वन ऑफ द एब्सोल्यूट फेवरेट बजाने जा रही हो. मुझे बहुत लोगों ने ये सॉन्ग रिकमेंड किया स्टार्टिंग विद तुम.

0: आपको ऐसी ही कुछ फीलिंग आएगी जब आप फ्लेवर लाउंज जाएंगे और वहां का खाना खाएंगे, बिकॉज वहां का खाना खाने के बाद ना भी ऐसा ही फील होता है कि यार हाय क्या कमाल हो गया। और फ्लेवर लाउंज जो कि फ्रिस्को में लोकेटेड है, वो लेके आए हैं ऑल न्यू वीकेंड लंच बुफे विथ डिलीशियस डिशेस, लाइव काउंटर्स, सब स्पेशल एंड फ्रेश फ्लेवर्स। और ये सब कुछ जो भी मैंने बताया वो सब कुछ आपको मिलेगा $24.99 पर पर्सन में। इतने में इतना कुछ मिल जाएगा यार, सोचो, काफी मजा आने वाला है। यहाँ का फूड बहुत ही टेस्टी है और ये सैटरडे और संडे को अवेलेबल है 12 से 3 बजे, ध्यान रखिए दोपहर के टाइम में, क्योंकि लंच बुफे है ना। और इनका जो एड्रेस है वो है 5855 प्रेस्टन रोड फ्रिस्को, और फ्लेवर लाउंज, गुड फूड गुड मेमोरीज। मेरा भी ऐसा ही मानना, अच्छा खाना हो ना तो पूरा मूड अच्छा हो जाता है, दिन अच्छा होता है, रात भी अच्छी हो जाती है।
1: ये तारा वो तारा हर तारा,
2: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर, होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
3: Dallas, are you ready? Jabu Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू, लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com। फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500। The Jago Times Commission, Jago Bhi, Jagao Bhi. Exclusive media partner, Panacea.
4: We need to talk.
5: अब क्या हुआ?
4: Nothing. It's not you.
5: Oh no.
4: It's the distance.
5: Distance? We live 10 minutes apart.
4: Arey, it's actually not you. It's that driving all the way for my Sal's Hot Chicken.
2: Irving, that long distance relationship is officially over. Sal's Hot Chicken is now in Irving. Your crispy chicken, loaded sandwiches and bold Sal's flavors just got a whole lot closer. Sal's Hot Chicken, Irving. Same obsession, less distance.
6: Beta, 95% aaye?
7: Haan, mummy.
6: Good. अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
8: मेरा?
6: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
8: वो
2: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटैक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड CFO सर्विसेज। विजिट agfintax.com। कॉल

0: 972-618-8555. AG Fintechs, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
1: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है.
2: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन.
3: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस.
4: तुमसे मिलके दिल का है.
2: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन.
3: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर. फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज. एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क.

आप सुन रहे हैं फनेशियर रेडियो 104.9 एफएम और मैं हूँ आरजे सिमी। और मेरे न जाने का वक्त हो रहा है, आधे घंटे बचे हैं आपके साथ। तो सोच रही होगी बहुत सारी बातें कर ही लूँ, जितनी भी हो पाती है लास्ट के। वैसे कल संडे है और संडे मॉर्निंग की फीलिंग ही अलग होती है। मंडे से फ्राइडे तो हम सोचते हैं कि अरे यार काश एक्स्ट्रा 5 मिनट 10 मिनट सोने को मिल जाते तो कितना अच्छा होता, अलार्म बजता है तो गुस्सा भी आता है, बट फिर देन वी वेक अप एंड गो टू आवर रेगुलर टास्क। लेकिन जब संडे होता है तो हम अलार्म भी नहीं लगाते और कितनी बार हमारी आँख खुल जाती है आदतन, और फिर दुख होता है कि भाई यार तो ये चीटिंग है यार, आज ज़्यादा सोना था, ये गलत बात है। पर कुछ लोगों को संडे को जल्दी उठना पसंद भी है, वो जो है अपना मी टाइम इन्जॉय करते हैं। कोई चाय लेकर बालकनी में बैठता है, कोई अपने पार्टनर के साथ ब्रेकफास्ट बना रहा होता है, कोई देसी ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए निकल जाता है, और कोई सोचता है तो आज तो कुछ नहीं, आज ऐसे पैर पे पैर डाल के एकदम इन्जॉय करते रहना है, बैठे रहना है, रिलैक्स करना है। और मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपका फेवरेट संडे मॉर्निंग क्या है, आप क्या करना पसंद करते हैं, बताइए मुझे। कॉल कर सकते हैं 972-235-5555 पे।

दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं परफेक्ट संडे मॉर्निंग्स के बारे में। और संडे मॉर्निंग का सबसे अच्छा पार्ट क्या है बताऊं? मेरे हिसाब से संडे मॉर्निंग की सबसे अच्छी बात तो ये है कि हम अपने टाइम के साथ थोड़ा फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, वरना वीकडेज में तो हम हमेशा भागते ही रहते हैं। कभी हम ऑफिस के लिए लेट हो रहे होते हैं, कभी ब्रेकफास्ट के लिए, कभी ट्रैफिक से बचने के लिए, मतलब बहुत सारी फटाफट हमको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, और कभी कभी हम अपने लिए टाइम निकालने में भी लेट हो जाते हैं। लेकिन संडे मॉर्निंग हमें एक मौका देती है कि हम थोड़ा रुक कर अपनी लाइफ को एंजॉय करें। कुछ लोगों के लिए संडे मॉर्निंग का मतलब है एक कप चाय, और कुछ लोगों के लिए है फ्रेश पराठे, कुछ लोगों के लिए लॉन्ग ड्राइव, और कुछ लोगों के लिए बस एक अच्छी नींद, जैसे कि मैं। मुझे एक्स्ट्रा सोना बहुत पसंद है संडे मॉर्निंग्स को। बट मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपका परफेक्ट संडे मॉर्निंग क्या है, वो कैसा होना चाहिए। आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं 972-235-5555।

जी, मुझे अपना दिल देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मैं खुशी खुशी रख लूंगी। और कभी कभी है ना, वीकेंड का सबसे अच्छा प्लान होता है किसी प्लान का ना होना। हाँ बिल्कुल, हम पूरे वीक जो है दूसरों के लिए टाइम निकालते रहते हैं, ऑफिस, फैमिली, फ्रेंड्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लेकिन एक वीकेंड तो हम अपने लिए भी थोड़ा टाइम निकाल ही सकते हैं। हम अपनी फेवरेट चाय बना सकते हैं, अपना फेवरेट म्यूजिक सुन सकते हैं, बुक पढ़ सकते हैं, वॉक पे जा सकते हैं, या फिर बस खिड़की के पास बैठकर बाहर का नजारा एंजॉय कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको ना हर वीकेंड प्रोडक्टिव होना जरूरी नहीं है, कभी कभी रेस्ट भी कर लिया कीजिए, क्योंकि हर वीकेंड हर बार जो है कुछ अचीव ही करें ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि आप खुश रहें। तो डू एंजॉय योर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द वीकेंड एंड फन। ऐशा तो आपको सुनते ही रहना चाहिए यार, इतने अमेजिंग सॉन्ग्स बजते हैं, आपको एंजॉयमेंट वहां से भी मिलती है।

रफ्ता रफ्ता मेरे जाने का टाइम भी हो गया। उम्मीद है कि आज की बातें, गाने और थोड़ी सी मस्ती आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लाई होगी। आपका दिन थोड़ा सा भी अगर मैं बेटर कर पाऊँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। दिस इज आरजे सिमी साइनिंग ऑफ, और बता दूं कि दिस पार्ट ऑफ आवर शो इज ब्रॉट टू यू बाय एजे फिनटेक्स, जो कि है वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टैक्स फर्म इन द US। ये ऑफर करते हैं फिनेंशियल सर्विसेज विद अनटैप्ड पोटेंशियल इंडिविजुअल्स के लिए भी एज वेल एज बिजनेसेस के लिए भी। चाहे आपका एक स्टार्टअप हो या फिर वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेस हो, इनकी फिनेंशियल सर्विसेज आपको जरूर मदद करेंगी ग्रो करने में आपके बिजनेस को। तो ये क्योंकि ना काफी ट्रस्टेड हैं, एफिशिएंट हैं और आपको तैयार करते हैं फ्यूचर के लिए। आपको इनसे कुछ और इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो आप कॉल कर सकते हैं 4699429888, या फिर आप उनके वेबसाइट पे भी जा सकते हैं विच इज ajfintechs.com। और एक बैंगर के साथ आज का शो खत्म करेंगे। Good night guys, take care and I'll meet you next weekend, Saturday 6 to 9 p.m.

0: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
1: Who are the employees your company simply cannot afford to lose? And are you doing enough to reward and retain them? An executive bonus plan using life insurance can be a flexible way to offer select key employees valuable protection today and potential future benefits later. To learn whether this strategy may fit your business, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Product subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Consult qualified legal and tax professionals before implementing any business insurance strategy. Not legal, tax, investment or financial advice.
2: आप पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था।
3: साइन मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया। सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स। और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी। लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा East Plano. Visit signaturecuisine.net. Signature Cuisine. Our taste for apna signature.
4: Hi, I'm Abhishek Bachchan and you're listening to Funasia Radio. Thank you all the listeners for always being there watching our films. Thank you Funasia Radio for spreading the word.

0: and your heart pumping.
1: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
2: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
3: This Shravan, celebrate tradition with little extra sparkle. Shri Krishna Jewelers is celebrating 10 glorious years in Dallas with 10 exciting offers. Enjoy special gifts with qualifying purchases, from silver coins and gold studs to diamond studs and solitaire jewelry. Plus, exciting savings on gold and diamond jewelry. Make the Shravan extra special. Visit Shri Krishna Jewelers in Frisco now through September 17th. Shri Krishna Jewelers. 10 glorious years and countless sparkling memories.
4: पनीर मंचूरियन का नाम तो सुना होगा, पर चिली पनीर बाओ कहानी में ट्विस्ट।
5: चिकन टिक्का पुरानी मोहब्बत, बट बुराडा चिकन टिक्का न्यू लव।
4: एंड पिस्ताचियो लैम्प चॉप्स,
5: फुल ऑन फ्लेवर का फ्यूजन।
6: That's Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irving. Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.
7: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू. लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई. डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com. फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 682-551-6500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Panacea.
8: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है.
9: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त. जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फनेशिया रेडियो.

0: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
1: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
0: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
1: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
0: सच में सब संभालेंगे?
1: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
2: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770। Vanessa Events, your celebration partner.
3: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
0: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
2: 360 shows True Payment presents Sonu Nigam live in Dallas.
4: Hi. तुमसे मिलके दिल का है।
0: Saturday, September 26th, 8:30 PM onwards at the Credit Union of Texas Event Center, Allen.
2: Tickets available at Ticketmaster. For more info, call 855-360-SHOWS. Exclusive media partner, Fun Asia Network.

0: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500 The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Panacea.
1: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
2: Abey, jaldi bol, kal subah Panvel nikalna hai.
3: पनवेल हो या डेलस सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त ओनली ऑन फनेशिया रेडियो।

0: संगीत प्रेमियों को जगजीत सिंह का नमस्कार। दोस्तों, मैं आपसे मुखातिब हूँ इस वक्त फन एशिया रेडियो की तरफ से।
1: Experience the thrill of the dance floor like never before with Club Fanasia.
2: I'm loving the music.
1: The ultimate destination for Bollywood dance hits.

0: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
1: Hi, this is Saif Ali Khan. You are listening to Fun Asia Radio.

0: Be.
1: Kaash.
0: Please help me.
2: रिकॉर्डिंग्स लाइंड अप है, शोज ऑर्गेनाइज किए हुए हैं, कौन करेगा ये सब?
3: हाँ
2: पता लगाओ कि कहाँ गए ये दोनों।
3: जी सर, पता लगा रहा हूँ।

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी, स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया। फन एशिया Do it. Yeah. Bring the beat for right back.

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: Desi Swag.
1: Desi Swag.
0: Bollywood Tag. Fun Asia.
1: Fun Asia.

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट। डैलस में रेडियो का डैड फनीशिया 104.9 FM।
1: Yeah, it's coming up.

0: नाच शुरू करें?
1: Tracks that put you on the right track.

0: जिंदगी के कई रंग फनीशा रेडियो के संग।
1: Mm-hmm.

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फनेशिया रेडियो।

0: उठता धुआं तो कैसे छुपाए
1: सुधी है शहर ला गमंग गमंग वर ला अपने अपनी मुंडी कर दे என்ன விட்டுருங்கோ
0: அக்கியா கரே ஜி ஹஜூரி

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।

0: पिक्चर
1: अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
2: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
0: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
0: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
0: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, your growth, our strategy. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
3: Hi Dallas, this is Ranbir Kapoor and you're listening to Fun Asia Radio.
4: Bhooli bisri wo jagah, usme lipti wo subah.

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट डैलस में रेडियो का डैड फनीशा 104.9 FM
1: Yeah, it's coming up.

A very good morning to all the listeners of Sunday Gupshup. Swagat hai aap sabka. Good morning. Hello, namaste, salam, satriyakal. Kaise hain aap sab? Main RJ Ekroop yahan par maujood hoon studio mein. 7 baje se leke 10 baje tak ye show aata hai jiska naam Sunday Gupshup aur lekar aati hoon isko main yani ki Ekroop. Aap sabka tahe dil se swagat hai. Studio ka phone number 972-235-5555. और बस इसी फ़ोन नंबर पर आप मुझे कॉल करके बता दीजिए कि आप कौन सा सॉन्ग सुनना चाहते हैं. 104.9 FM फाइनेंशियल रेडियो की फ्रीक्वेंसी पर मैं आरजे एकरूप आपका स्वागत करती हूँ 7 बजे से 10 बजे तक संडे गपशप संडे मॉर्निंग. जी हाँ, यहाँ पर संडे के संडे आती हूँ और आपके साथ 3 घंटे जो है आपके ही चॉइस के सॉन्ग्स होते हैं, आपके साथ ही बातें होती हैं और बस मिलजुल कर जो है अपना हाल मेरा हाल बस यूं ही ये जो है शो चलता है. यू आर मोर देन वेलकम टू कॉल मी, इनफैक्ट डू कॉल मी इन 972-235-5555 है स्टूडियो का फ़ोन नंबर. आज की डेट है 9/13 यानी कि लकी नंबर 13. संडे है आज और बस आप अपना जो है आज का दिन अच्छा शुरू करें, यही मेरी मनोकामना है आपके लिए और कोशिश भी होती है अच्छे गीतों के साथ अच्छे संगीत के साथ शुरू हो अगर दिन तो जो है दिन अच्छा ही होता है. मीनिंगफुल सॉन्ग्स द मेलोडी ऑफ बॉलीवुड. The songs that still touch us, the songs that still make such an impact on us, yani ki hame jo hai uplift kar deta hai acha music aur jo hai hum usko phir pura din gungunate rehte hain. 972-235-5555 is the number to the studio show ka aagaaz karte hain and mera naam main fir se bata dun Ekroop.

0: ये वाला सॉन्ग बहुत ही पॉपुलर जोड़ी माला सिन्हा एंड राजेंद्र कुमार पर फिल्माया गया, और आई थिंक फिल्म का नाम है ललकार. छोटा सा सॉन्ग था, वैसे तो थोड़ा लंबा है ये, बट आई थिंक दिस वन दैट आई प्लेड वाज somehow the shorter version. तो अब जो है बात हो रही थी अजमीना जी के साथ, एंड दिस इज द सॉन्ग शी वॉन्ट्स टू लिसन टू. एंड गुड मॉर्निंग आपको भी अजमीना जी. योर प्रिटी मच अवेक सो अर्ली, एंड आप कॉल भी करती हैं, सो दैट मीन्स अ लॉट फॉर मी, फॉर द लव दैट यू शावर टू मी एंड ऑन दिस शो. बहुत अच्छे सॉन्ग्स की आप हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं, और लाइक द प्रीवियस टाइम्स दिस वन ऑल्सो दैट यू रिक्वेस्टेड टुडे इज जस्ट वेरी स्वीट सॉन्ग, मेरी सोनी मेरी तमन्ना.
1: सोनी, राम राम राम.
0: ये थोड़े से डायलॉग्स हैं, इनको आगे कर देते हैं.

नमक के जैसा किरदार होना चाहिए. जो नमक होता है ना, द टेबल सॉल्ट और द कॉमन सॉल्ट दैट वी पुट इन आवर फूड, ताकि जो है खाना स्वाद बन जाए, अच्छा सा उसका टेस्ट आ जाए. सो नमक के जैसा किरदार होना चाहिए, ना कोई ज़्यादा इस्तेमाल करे और ना कोई आपके बिना रह सके.

0: काला बाजार फिल्म का नाम, और उसी फिल्म का हम ये सॉन्ग सुन रहे थे, एसडी बर्मन की का म्यूजिक एंड मोहम्मद रफ़ी साहब की इतनी अच्छी आवाज़। और ये सॉन्ग जो है देवानंद साहब पर फिल्माया गया, जिनका रियल नेम धर्मदेव पिशोरी मल आनंद। एंड इनका जो है जन्म इसी महीने हुआ था, अक्टूबर, वेल सितंबर में, सो सितंबर 26 इज़ हिज डेट ऑफ बर्थ। और इनका जो है ही पैस्ड अवे ऑन दिसंबर 3। सो सितंबर के बॉर्न हैं, इनका जन्मदिन आने वाला है। एंड ये इंडियन फिल्में जो हैं, हिंदी फिल्मों के बहुत ही प्रोमिनेंट, वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड और यूनिक एक्टर रहे हैं। दादा साहेब फाल्के अवार्ड इनको मिला था 2002 में। एंड इनका अगर काम देखें तो इन्होंने 100 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया है, और अपना स्टाइल, अपनी अदाएं, अपनी एक्टिंग और डायलॉग डिलीवरी से सबका मन मोह लिया है कितनी बार। एंड बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी इनको मिला हुआ है। वेरी एस्टैब्लिश्ड एक्टर, और इन्होंने डायरेक्शन भी की है फिल्मों की, राइटिंग भी की हुई है। एंड ऑफ कोर्स अगर इतना काम कर लो तो फिर प्रोडक्शन में भी चले जाते हैं, प्रोड्यूसर भी ये जो है ऐसे बड़े बड़े कलाकार बन जाते हैं। बहुत ही अच्छी फिल्मों में इनका जो है काम रहा। इनका जो डेब्यू था वो 1946 में हुआ था, हम एक हैं, और उसके बाद जो है इनको कमर्शियली बहुत सक्सेस मिला, जिस मूवी में भी इन्होंने काम किया। ब्रेक के बाद मैं ज्वाइन करूंगी आपको।
1: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
2: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
3: Dallas has its own superheroes, fighting dust, clogs, blocked vents and hidden fire hazards every day. And now, the superheroes of ducts are turning one. Duct Time celebrates its first anniversary in Dallas. For Duct Time services, call Jeepu Patel at 972-877-2500 and book your appointment today for a cleaner, safer and fresher home.
4: हुजूर, आपको चुनना होगा, हम या ये बिरयानी।
5: बेगम, मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन बिरिस्ता की हैदराबादी बिरयानी अपनी जगह।
4: आखिर आखिर क्या है इस बिरयानी में?
5: दम में नरमी, मसालों में जादू और हर निवाले में नवाबी स्वाद।
6: Presenting Barista House by Prism Bar and Grill. Authentic Hyderabadi flavors and a truly Nawabi experience. North Indian favorites, delicious desserts and many more to explore. Denton's famous Barista House is now in Frisco, 6377 Custer Road, Frisco, Texas.
7: Happy hours, Monday through Friday from 3 p.m. to 7 p.m.
6: Barista House, richness of biryani bliss.
8: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
9: कुछ भी नहीं, Ura Debt Relief will do it for us.
8: क्या मतलब?
9: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
8: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
9: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
8: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
10: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
11: जीनी, हुकम मेरे आका, हम आज पार्टी के मूड में हैं। एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो।
12: मिराज लाउंज चलिए मेरे आका, लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में हैं।
13: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं।
12: नो प्रॉब्लम आका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए।
13: और एंटरटेनमेंट,
12: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स सब आपकी खिदमत में।
13: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
12: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे। मिरेकल्स हैपन इन मिराज।
14: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
15: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
16: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
17: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
16: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
18: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
19: अजी सुनते हो?
20: अजी नहीं, एजी सुनते हैं।
21: The OG of Tax Planning, AG Fintax. सुनेंगे आपके फाइनेंशियल कंसर्न्स, देंगे स्मार्ट सॉल्यूशंस। Every Friday 9:45 AM only on Fun Asia Radio.
22: We can

0: अजी सुनते हो?
1: अजी नहीं, एजी सुनते हैं।
2: The OG of Tax Planning, AG FinTax. सुनेंगे आपके financial concerns, देंगे smart solutions. Every Friday 9:45 AM, only on Funasia Radio.
3: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस, चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस। पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए। चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में। Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.

स्वागत है आपका एक बार फिर से। 10 बजे तक मैं यहाँ हूँ स्टूडियो में, तो बस 10 बजे तक की जितनी भी ब्रेक्स आएंगी उसके बाद जब रिज्यूम करेंगे तो मैं आपका स्वागत करूंगी। थैंक यू, धन्यवाद आप सबका जुड़े हुए हैं, फ़ोन कॉल्स आपके आ रहे हैं, इससे और अच्छी बात क्या हो सकती है। आज की जो डेट है सितंबर 13, मीनिंग 13th डे ऑफ दिस 9 मंथ, और टाइम, जी हाँ, गुड टाइम्स फ्लाई बाय फास्ट। सुबह सुबह जब आप उठते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? आई डोंट नो, आप आई एम श्योर फ्रेशन अप होके संडे को सुबह 7 बजे आप रेडियो ऑन कर लेते हैं, तभी मुझे पता चल जाता है कि 7 बजे से ही आपके फ़ोन कॉल्स क्योंकि आने लग जाते हैं। अगर आप मेरे जैसे हैं, यानी कि चाय के शौकीन हैं, तो फिर सबसे पहली चीज़ जो है चाय मैं पीती हूँ सुबह। ऑफ कोर्स पानी पी लो और बाकी और जो भी अच्छी चीज़ें होती हैं कर लो, लेकिन जो पसंदीदा चीज़ है वो तो चाय है। सो चाय ऐसी होनी चाहिए जो नींद भी भगा दे और टेंशन को भी भगा दे। सो आई होप कि आपकी चाय ऐसी हो। आप जो इतने अच्छे अच्छे गाने यहाँ पर मुझे रिक्वेस्ट करते हैं, मैं यहाँ पर प्ले करती हूँ, एंड चाय के साथ वो इतने सुंदर सॉन्ग्स सुनने का मज़ा ही अलग होता है। 7 बजे से 10 बजे तक ये शो आता है, इसको लेकर आती हूँ मैं आरजे एक रूप, 9722355555। हमारे लिसनर अपनी ग्रैंड डॉटर के साथ इस टाइम पर पार्क में हैं और वो कहते हैं कि हम 10 बजे तक पार्क में होते हैं तो आपका ये शो सुनते हैं। सो बहुत बहुत खुशी होती है जब आप कॉल भी करते हैं, बता देते हैं। हमारे लिसनर, उन्होंने ही, सेम लिसनर ने ये वाले सॉन्ग की रिक्वेस्ट की है, देवानंद साहब पर फिल्माया गया है, एंड हेमा जी ये गीत गा रही हैं। जॉनी मेरा नाम मूवी का नाम, जॉनी मेरा नाम।

1970 में ये आई थी फिल्म, एंड उस साल की सबसे ज़्यादा कमर्शली सक्सेसफुल फिल्म यही थी जिसका नाम जॉनी मेरा नाम। और इसमें देवानंद साहब, उनके साथ हेमा जी, एंड ये फिल्म का म्यूज़िक कल्याण जी आनंद जी का रहा। आवाज़ें आप जो सुन रहे थे किशोर कुमार एंड आशा जी की, बहुत ही प्यारा सॉन्ग। एंड इनफैक्ट इस मूवी के सारे ही सॉन्ग्स बहुत पॉपुलर हुए थे, ओ बाबुल प्यारे, हुस्न का हुस्न के लाखों रंग, और ये ओ मेरे राजा, बाकी और भी बहुत अच्छे सॉन्ग्स हैं। कभी मौका मिलेगा तो डेफिनेटली उनको भी प्ले करेंगे, बट मोस्टली ये तीन सॉन्ग्स हैं जो इस फिल्म के अक्सर हम सुनते हैं या इनको कहीं हम प्ले करते हैं। सो दीज वर द पॉपुलर सॉन्ग्स, कल्याण जी आनंद जी का म्यूज़िक, 1970 की ये हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म रही। 972-235-5555 इज़ द नंबर टू द स्टूडियो। ये जो शो है मेरा, ये इसको स्पॉन्सर करते हैं ओमर ख्वाजा। ओमर ख्वाजा पर्सनल इंजरी अटॉर्नी है कम्युनिटी में, हमारे टाउन में, डैलस में। और अगर आपको कुछ, गॉड फॉरबिड, अगर कोई ऐसी ज़रूरत पड़ती है, कहीं इंजरी है कार या ट्रक के एक्सीडेंट में, तो आप इनके साथ राब्ता कायम करें। अटॉर्नी ओमर ख्वाजा, ही विल फाइट योर केस, ही विल फाइट फॉर यू एंड मेक श्योर दैट यू गेट कॉम्पेंसेटेड फॉर वॉट यू डिजर्व। उनका फ़ोन नंबर है 469-300-5046। आप ज़रूर कॉन्टैक्ट करें इफ़ यू एवर नीड एन अटॉर्नी फॉर सच पर्पजेज। अटॉर्नी ओमर डॉट कॉम है उनकी वेबसाइट, एंड लॉ ऑफिसज ऑफ ओमर ख्वाजा आर द वंस स्पॉन्सरिंग दिस शो दैट कम्स ऑन संडे फॉर यू फ्रॉम 7 to 10 AM। और शो का नाम है संडे का शब। वंस अगेन, ओमर ख्वाजा के साथ आप कॉन्टैक्ट करें, 469-300-5046 इज हिज फोन नंबर, एंड अटॉर्नी ओमर डॉट कॉम इज़ हिज़ वेबसाइट। अभी देवानंद साहब की, आई डोंट नो, समहाउ बातें शुरू हो गई, उन्हीं की फिल्मों के सॉन्ग्स रिक्वेस्ट हुए पीछे, अभी भी मैंने प्ले किया और ब्रेक पे जाने से पहले भी प्ले किया था। देर इज़ वन मोर लिसनर दैट वॉन्ट्स टू लिसन टू दिस सॉन्ग That also features देवानंद साहब और उनके साथ हैं टीना मुनीम। देश परदेश है फिल्म का नाम, और ये वाला सॉन्ग है तू पी और जी।

फिल्म का नाम बहू बेगम और इसमें एक्ट्रेस मीना कुमारी जी, लता जी की आवाज़ दुनिया करे सवाल। हमारी रीटा जी ने ये पूछा और इस सॉन्ग की रिक्वेस्ट की और दुनिया करे सवाल। आई डोंट नो अब दुनिया सवाल करती है या नहीं करती, या सभी अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं, अपनी अपनी स्ट्रगल्स के साथ जूझ रहे हैं कि किसी को कोई एक दूसरे को सवाल नहीं करता, बिकॉज़ एवरीबडी इज़ सो एंटेंगल्ड इन देयर ओन कॉम्प्लिकेटेड लाइव्स। सो एनीवे, ये बड़ा प्यारा सा सॉन्ग था जो हम सुन रहे थे, फिल्म का नाम बहू बेगम। अगला सॉन्ग जिसकी रिक्वेस्ट आई हुई है वो थोड़ा अच्छा सा हाई स्पिरिटेड सॉन्ग है, पेपी नंबर है, तो चलिए इसको भी एंजॉय कर लेते हैं। आई नो इट इज़ अ कॉन्ट्रास्ट फ्रॉम अ सैड सॉन्ग टू जस्ट अ डिफरेंट जॉनरा, कम्प्लीटली ऑपोजिट, विच इज़ गोइंग टू बी अ वेरी पैपी नाइस नंबर दैट विल डेफिनेटली अपलिफ्ट योर स्पिरिट्स। हियर यू गो।

0: लो मुझको।
1: हमारे कॉलर्स इतने स्वीट हैं, इतनी बातें जो हैं फिर हमारी चलती रहती हैं कि गाना मुझे कई बार थोड़ा रिवाइंड करना पड़ जाता है बिकॉज आई एम ऑन द फ़ोन विद देम और आई गेस टाइम का अंदाज़ा मुझे तो दिख रहा होता है कि गाना ख़त्म हो रहा है लेकिन हमारे लिसनर्स को नहीं पता चलता। तो माई इंटेंशन इज़ नॉट टू कट यू ऑफ, लेकिन क्या करें, टाइम की पाबंदी है तो फिर टाइम के अकॉर्डिंगली जो है मूव ऑन भी करना पड़ता है। अभी ये वाला जो सॉन्ग है ये बहुत ही अच्छा मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में है ये वाला सॉन्ग, एंड देन ब्रेक पर जाएंगे, फिर ब्रेक के बाद आकर और भी अच्छे अच्छे सॉन्ग्स आपकी चॉइस के हम सुनेंगे।

वेलकम बैक शो को 1 घंटा हो चुका है, 7 बजे ये शो जो है शुरू होता है शो शुरू होता है, संडे गपशप है। इस शो का नाम, मेरा नाम है एक रूप, आरजे एक रूप। जी हाँ, 972-235-5555 है स्टूडियो का फ़ोन नंबर, एंड आई बेट यू आर ट्यून्ड इन टू 104.9 FM फन एशिया रेडियो। संडे, आज तारीख है सितंबर, तारीख है 13th, महीना है सितंबर। 13th इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग नंबर। अगर आप मैथ के शौकीन हैं तो आपको पता होगा कि जो नंबर 13 होता है वो प्राइम नंबर होता है, एंड दे से इट इज़ अ ट्विन प्राइम विद 11, और इसको जो है 17 का कज़न भी माना जाता है। सो सम गुड थिंग्स अबाउट 13, बेकर्स डजन माना जाता है, बिकॉज़ वैसे तो डजन जो होता है वो 12 है, बट दे से व्हेन अ बेकर पुट्स एन एक्स्ट्रा पोर्शन तो वो बेकर्स डजन हो जाता है, बिकॉज़ जो है उन्होंने एक एक्स्ट्रा पोर्शन जो है 12 से 13 हो जाता है। सो 13 हैज़ वेरी पेक्यूलियर इम्पोर्टेंस इन मैनी कल्चर्स। टुडे इज़ सेप्टेम्बर 13, संडे है, सेकेंड संडे है, और इस महीने में 4 संडेज़ हैं, अनलाइक ऑगस्ट वेयर वी हैड 5 संडेज़। तो कहने का मतलब कि 4 बार मुलाकात होगी मेरी आपसे, 2 बार तो आज हो ही गई, सेकेंड टाइम टुडे एंड देन 2 मोर टाइम्स बिकॉज आई कम हियर ओनली ऑन अ संडे। स्वागत करती हूँ आपका, हमारे लिसनर जो ये वाले सॉन्ग की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आई थिंक दिस इज़ वेरी अप्रोप्रिएट टू प्ले राइट आफ्टर द ब्रेक। हियर इट इज़।

This song and this voice definitely defines Madhu Balaji. Such a beautiful face and such a beautiful voice in the playback, in the background. Asha Ji, Asha Bhonsle, and Madhu Balaji in the front. हावड़ा ब्रिज फिल्म का नाम और ये सॉन्ग हमारे लिसनर ने रिक्वेस्ट किया, जो कि बैक टू बैक चाहते हैं कि मैं उनकी चॉइस के दो सॉन्ग्स प्ले करूं. सो हियर यू गो, ये वाला सेकंड सॉन्ग है, तो आप इसको भी एंजॉय कीजिए. फिल्म का नाम शिकारी, अगेन आशा भोंसले जी की आवाज़.

अब हमारे लिसनर ये नहीं कहेंगे कि आपने जो है रिक्वेस्टेड जो चॉइस वाले मेरे सॉन्ग्स हैं उनको काट दिया. बिल्कुल नहीं, अनइंटरप्टेड फ्रॉम ए टू जी पूरा पूरा प्ले किया है. सो होपफुली दिस मेक्स योर डे ब्यूटिफुल, क्योंकि हमारा तो दिन डेफिनेटली बन जाता है जब इतने अच्छे सॉन्ग्स आपकी चॉइस के मैं यहाँ पर प्ले करती हूँ. दिस पार्ट ऑफ दिस शो इज़ ब्रॉट टू यू बाई ए जी फिनटेक्स एंड दोज गाइज आर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टैक्स फर्म्स इन द यू एस. दे ऑफर इनोवेटिव फाइनेंशियल सर्विसेज विद अनटैप्ड पोटेंशियल फॉर बोथ इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस. दे आर ट्रस्टेड, यानी कि ए जी फिनटेक्स जो हैं ट्रस्टेड ब्रांड हैं. दे आर एफिशेंट एंड दे डेफिनेटली प्रिपेयर यू फॉर द फ्यूचर. टू गेट इन टच विद ए जी फिनटेक्स द फोन नंबर इज 469-942-9888 or you can visit their website, which is agfintechs.com. Financial planning, taxes, कोई भी गाइडेंस चाहिए हो, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ के लिए आपको कुछ सलाह मशवरा करना हो, चाहे वो आपके अपने इंडिपेंडेंटली इंडिविजुअल पर्पसेस के लिए है या फिर आपका वो बिजनेस है जिसमें आप थोड़ी गाइडेंस चाहते हैं, तो फिर एजी फिनटेक्स का नाम ज़रूर याद रखें. 469-942-9888 और उनकी वेबसाइट है agfintechs.com. अगला सॉन्ग जिसकी रिक्वेस्ट आई हुई है बहुत ही अमेजिंग, बड़ा प्यारा सा सॉन्ग है एंड उस शख्सियत की वो फिल्म है, यानी कि दैट सर्टन पर्सनालिटी वाज फीचर्ड इन दिस फिल्म एज द लीडिंग एक्टर. और ये वही हैं जिन्होंने बहुत ही छोटी उम्र में अपना जो है डायरेक्शन में हाथ डाल दिया था. एट जस्ट यंग एज ऑफ 24 उन्होंने अपना स्टूडियो आरके फिल्म्स बना लिया था एंड ही बिकेम द यंगेस्ट डायरेक्टर ऑफ हिज टाइम. He is the person who said the show must go on, the greatest and the most celebrated showman of the Hindi cinema. Raj Kapoor sahab ki film ka ye song itna amazing hai ki aap bhi khush ho jayenge. Shri 420.

The greatest showman ever in the Hindi cinema, जिनकी लाइफ कट शॉर्ट हो गई थी हेल्थ रीजंस से. इनकी जो है डेथ एट द एज ऑफ 63, बहुत यंग एज में ये चल बसे. इनका जो काम, इनका जो नाम, जो लेगेसी जो ये छोड़ कर गए हैं, वो तो डेफिनेटली एवरग्रीन एंड अमर है. रशिया में इनकी पॉपुलैरिटी राज कपूर साहब की इतनी ज़्यादा थी कि रशियंस जो हैं इंडिया और इंडिया के कल्चर को जब मेंशन करते थे या रेफ़र करते थे, तो उनके मन में सिर्फ तीन चीज़ें, वेल सिर्फ क्या, दोज थ्री थिंग्स आर क्वाइट फास्ट, तीन चीज़ें ही जो हैं वो सिनोनिमस है उनके मन में इंडिया के लिए. एक तो लॉर्ड शिवा, जो गॉड हैं शिवा, एंड देन दूसरा योगा, और तीसरा राज कपूर. जी हाँ, रशियंस यूज टू रिगार्ड हिम सो हाईली, दे वर बिग फैंस ऑफ राज कपूर साहब. सो इतना अच्छा सॉन्ग, थैंक यू हमारे लिसनर जिन्होंने हम सबका मन खुश कर दिया. और अगला वाला सॉन्ग भी बहुत आपका दिल खुश करेगा, तकदीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले.

0: देसी फ्लेवर्स भी और टेक्सास के फेवरेट्स भी, अब सब कुछ मिलेगा एक ही जगह HEB में। सोना मसूरी राइस, नानक पनीर, पाले जी बिस्किट्स और बहुत कुछ, वही ऑथेंटिक स्वाद जिसके साथ आप बड़े हुए हैं। और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो आपको यहां पसंद है। अब एक ही शॉपिंग ट्रिप में ज्यादा काम निपटाइए और इस समर जरूर देखिए HEB के नए DFW स्टोर्स मिड सिटीज, अर्विंग और मर्फी में खुल रहे हैं। तो आज ही अपने नजदीकी HEB पर जाएं और खरीदिए अपने ट्रेडिशनल्स और टेक्सन फेवरेट्स। HEB, here everything is better.
1: Are you trying to protect your business, retain top talent, and plan for future succession all at the same time? An executive retention strategy using life insurance may help address multiple business goals, including key person protection, employee retention incentives, and future buyout planning. To explore business life insurance strategies, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Products subject to carrier approval, policy terms, and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Business planning strategies should be reviewed with qualified legal and tax professionals. Not legal, tax, or investment advice.
2: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen ja

0: Amaron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
1: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
2: Call the SBA Loan Experts.
1: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
2: Call the SBA Loan Experts.
1: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
2: Call the SBA Loan Experts.
1: Construction ho ya renovation, business khareedna ho ya refinance karana ho. For all your business financial needs at the best interest rate and lowest down payment, call the SBA Loan Experts at 817-786-3338. That's 817-786-3338.
3: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय करूंगी।
4: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
5: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
6: इतना सब और प्राइस?
5: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन। समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
7: मैं हीरो।
8: हुजूर, आपको चुनना होगा, हम या ये बिरयानी।
9: बेगम, मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन बिरिस्ता की हैदराबादी बिरयानी अपनी जगह।
8: आखिर क्या है इस बिरयानी में?
9: दम में नरमी, मसालों में जादू और हर निवाले में नवाबी स्वाद।
10: Presenting Barista House by Prism Bar and Grill. Authentic Hyderabadi flavors and a truly Nawabi experience. North Indian favorites, delicious desserts and many more to explore. Denton's famous Barista House is now in Frisco. 6377 Custer Road, Frisco, Texas.
5: Happy hours, Monday through Friday from 3 p.m. to 7 p.m.
10: Barista House, richness of biryani bliss.
11: Your dream wedding deserves nothing but the extraordinary. Introducing Lux Wedding Expo, an exclusive luxury bridal showcase happening September 20th, 2026 at Frisco Hall. Discover everything you need to create your perfect celebration, from top designers, photographers, decor, jewelry and beauty experts to stunning venues and tastemakers, all under one roof. Lux Wedding Expo, presented by Flash Brush with Fun Asia Network as the media partner. Want to showcase your brand? Booths and sponsorships are available. Call 972-963-0954 today. Lux Wedding Expo, where your dream wedding begins.

दिल क्या करे, फिल्म जूली का ये सॉन्ग, किशोर दा की आवाज़। और ये फिल्म जो है बहुत पॉपुलर हुई थी अपने टाइम पर, एंड आगे चलकर हमने इसी जूली, ये जो एक्ट्रेस जिन्होंने जूली का रोल प्ले किया था, आगे चलकर भी हमने उनको साउथ इंडियन एज वेल एज हिंदी बॉलीवुड फिल्मों में भी देखा। दिस सॉन्ग डेफिनेटली इज़ एन एवरग्रीन सॉन्ग, किशोर दा की आवाज़ में गाया हुआ, जो कि इसके कुछ रीमिक्सेस भी आए हैं, डिफरेंट रेंडिशंस भी बनी हैं, बट द ओरिजिनल वन डेफिनेटली, जिसका म्यूज़िक दिया है राजेश रोशन ने और लिरिक्स लिखे हैं आनंद बख्शी ने, ये द एवर सो पॉपुलर सॉन्ग। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इज़ लोकेटेड इन आवर कम्युनिटी एंड दे हैव मल्टीपल लोकेशंस। अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो, या फिर जो है ये सर्टन प्रैक्टिस आपके आउट ऑफ नेटवर्क में आती है, तो कोई बात नहीं, प्राइमरी केयर, पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर हैव डिफरेंट इंश्योरेंस प्लान्स दैट आर अफोर्डेबल। एंड फॉर एग्जांपल, दिस वन दैट दे हैव इज़ जस्ट $85 अ मंथ। इसमें आपको प्राइमरी केयर मिलती है ऑब्वियसली, विच इंक्लूड्स प्रिवेंटिव केयर, मेडिकेशन मैनेजमेंट, टेली हेल्थ एंड अदर सर्विसेज टू। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉल देम एट 214-666-6259, और यू कैन विजिट देयर वेबसाइट विच इज़ पैशन हेल्थ फिजिशंस डॉट कॉम। ये जो है आपके लिए, आई थिंक दिस इज़ नॉट अ हेल्थ इंश्योरेंस, आई शुड नॉट हैव यूज द टर्म, लेकिन ये है जो आपके लिए अफोर्डेबल एक केयर है, जो आपको आप खरीद सकते हैं फॉर $85 अ मंथ। लाइक आई सेड, फॉर मोर इंफॉर्मेशन एंड द करेक्ट अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन, यू शुड कॉल एंड गेट इन टच विद पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर एट 214-666-6259, और देयर वेबसाइट इज़ पैशन हेल्थ फिजिशंस डॉट कॉम। देर आर रिस्ट्रिक्शंस दैट विल अप्लाई, देर फोर इट इज़ ऑलवेज बेटर टू स्पीक टू दैम फर्स्ट हैंड एंड गेट द राइट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन।

आंखें फिल्म 1968 की पॉपुलर फिल्म जिसमें माला सिन्हा तो ये सॉन्ग गा रही हैं और धर्मेंद्र, जी हाँ, द हैंडसम एक्टर धर्मेंद्र जी इनके साथ इस फिल्म में. फिल्म डेफिनेटली बहुत पॉपुलर हुई थी, नॉट ओनली फॉर इट्स स्टोरी बट आल्सो फॉर द म्यूज़िक. अगला सॉन्ग हमें थोड़ा रेट्रो की तरफ, 40s की तरफ लेकर जाएगा. तो ये जो है 68 का हम सॉन्ग सुन रहे थे. ये अबाउट 1944 में आई थी फिल्म रतन. छोटा सा सॉन्ग है, अबाउट 2.5 मिनट का. तो चलिए सुनते हैं, एंजॉय करते हैं.

972-235-5555 is the number to the studio. मैं हूँ आपकी होस्ट आरजे इकरूप, आपके लिए ये शो पेश कर रही हूँ 7 बजे से 10 बजे तक. वी आर हेडिंग टूवर्ड्स अनदर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक एट 9 o'clock. अभी फिलहाल जो है टाइम 8:51 हो रहे हैं स्टूडियो की क्लॉक में. एंड यस, 7 बजे ये शो शुरू हुआ. अबाउट अभी नाउ 9 बजने वाले हैं, 2 घंटे होने वाले हैं इस शो को. 9 बजे की ब्रेक के बाद एक गिव अवे आपके लिए, गिव अवे का क्वेश्चन लेकर आऊँगी, बिकॉज आई हैव अ गिव अवे फ्रॉम अ लोकल बिजनेस दैट दे आर ट्राइंग टू प्रमोट, एंड उनकी जो है कस्टमर सर्विस बहुत अव्वल है. सो उसके बारे में बात करेंगे 9 बजे की ब्रेक के बाद. फिलहाल ये वाला सॉन्ग जो इतना मेलोडियस है, किशोर कुमार साहब की आवाज़.

1970 की ये सुपर डुपर हिट फिल्म, और इस फिल्म का बहुत बड़ा हाथ रहा राजेश खन्ना साहब की पॉपुलैरिटी एंड स्टारडम के लिए. ही रियली एन्जॉयड हिज सेलिब्रिटी स्टेटस एज वन ऑफ द फिल्म्स थ्रू दिस फिल्म्स विच सेलिब्रिटी स्टेटस दैट ही एन्जॉयड. एंड दिस फिल्म डेफिनेटली प्लेड अ बिग मेजर रोल इन हिज करियर. असित सेन की ये फिल्म, जो कि बहुत ही क्लासिक फिल्मों में इसका नाम आता है सफ़र, और इसका जो ये सोलफुल म्यूज़िक है कल्याण जी आनंद जी की की कॉम्पोजिशन, और ये आवाज़ किशोर दा की.

टू माई नॉलेज आई थिंक राजेश खन्ना साहब एंड फिरोज खान जी की ये सिर्फ यही फिल्म है जिसमें उन दोनों ने इकट्ठे काम किया है. एंड आई डोंट थिंक कि इन दोनों ने सेम स्क्रीन को शेयर किया था. आई डोंट थिंक दे केम ऑन द सेम स्क्रीन टुगेदर इवन दो दे वर बोथ पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल आइकॉनिक फिल्म. इसमें जो है आयस जौहर एंड अरुणा ईरानी जी हस्बैंड एंड वाइफ का रोल प्ले करते हैं. एंड इन रियलिटी ऑफ कोर्स दे वर नॉट रियल. इसमें सिर्फ मूवी में दिखाया है उनको. और आयस जौहर जो हैं अरुणा ईरानी से 32 ईयर्स इतने बड़े हैं उनसे, लेकिन मूवी में दे आर शोन एज अ कपल. डेफिनेटली चार चांद लग जाते हैं जब इस शो पर ऐसे सॉन्ग्स की रिक्वेस्ट आती है. सो थैंक यू सो मच दौलत जी आपके फोन कॉल के लिए. वेलकम टू डैलस. एंड आपके ऑरलैंडो में सब कुछ मिलता होगा, लेकिन फन एशिया रेडियो जैसा जो मजा है वो नहीं मिलता होगा. एनीवे वेलकम टू डैलस.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume!
3: This Shravan, celebrate tradition with little extra sparkle. Shri Krishna Jewelers is celebrating 10 glorious years in Dallas with 10 exciting offers. Enjoy special gifts with qualifying purchases, from silver coins and gold studs to diamond studs and solitaire jewelry. Plus, exciting savings on gold and diamond jewelry. Make this Shravan extra special. Visit Shri Krishna Jewelers in Frisco now through September 17th. Shri Krishna Jewelers. 10 glorious years and countless sparkling memories.
4: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
5: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
4: नहीं।
5: बुककीपिंग अपडेटेड है?
4: नहीं।
5: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
4: वो भी नहीं।
5: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
6: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG FinTax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG FinTax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
7: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
8: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
9: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
10: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
11: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
10: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
12: एक और लड्डू ले लो।
13: थोड़ी और बिरयानी?
12: अरे अमरीका जाके थोड़ी मिलेगा।
14: अब सिर्फ सूटकेसेस ही नहीं, वेट, कोलेस्ट्रॉल और शुगर भी एक्स्ट्रा बैगेज बनके साथ आ गए।
15: इंडिया ट्रिप के बाद या कभी भी अपनी हेल्थ को गेस वर्क पर मत छोड़िए। स्केड्यूल योर एनुअल हेल्थ चेकअप एट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। अलोंग विद ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल एंड वेट चेक्स, दे आल्सो ऑफर डिप्रेशन एंड एंग्जायटी स्क्रीनिंग, अल्कोहल हेल्थ असेसमेंट, फाइब्रो स्कैन, विटामिन B12 टेस्टिंग एंड मेनी अदर प्रिवेंटिव हेल्थ स्क्रीनिंग्स। कॉल और टेक्स्ट 214-666-6259। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर।
16: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
17: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
16: Kya matlab?
17: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
16: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
17: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
16: Ab to karna hi padega, madam.
18: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
10: Party is on everyone's mind at the moment in Dallas, cause the hottest destination to party with your tribe is in town. Mirage Lounge, a premium lounge offering hookahs, bites, crafted cocktails and live music and DJ nights. And guess what? A happy hour from 11 a.m. to 5 p.m. Monday to Thursday with hookahs at $15.99 and shots at $4.99 each. Plus, ladies' night and college nights bhi.
6: Visit Mirage Lounge at McKinney Ranch Parkway. Cause miracles happen in Mirage.
19: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंड ट्रैक बन जाती है।
20: वही आवाज
15: आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
6: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
13: तुमसे मिलके दिल का है।
15: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
6: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क। इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये, इश्क इश्क है।

0: एक वुमन के इतने सारे रोल्स होते हैं, वो ही इस सॉन्ग में बहुत ही खूबसूरती से गाया भी है और दिखाया भी है, तू ही तू। वैसे तो यूजुअली ये मैं सॉन्ग वुमेन्स डे पर प्ले करती हूँ, बट आई डोंट नो, आई जस्ट थॉट ऑफ प्लेइंग दिस सॉन्ग अराउंड दिस टाइम व्हेन वी रिटर्न फ्रॉम आवर 9 o'clock ब्रेक। 2 घंटे हो गए हैं, रादर 2 hours and 8 minutes हो गए हैं, एंड 52 मिनट्स से थोड़ा सा टाइम सेकेंड्स कम है 10 o'clock होने में, एंड देन जो है मुझे ये शो रैप अप करना होगा। मेरी मुलाकात आपसे संडे को होती है 7 से 10, एंड दिस बिकम्स अ गोल्डन टाइम, गोल्डन आवर्स। वैसे तो गोल्डन आवर बोलते हैं, बट ये जो है बड़ा कीमती वक्त हो जाता है। आपके फ़ोन कॉल्स आते हैं, आपसे बातें होती हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इतने अच्छे सॉन्ग्स जो आप रिक्वेस्ट करते हैं, जो आपकी चॉइस के होते हैं, वो यहाँ पर अच्छे अच्छे सॉन्ग्स प्ले होते हैं। सो शुक्रिया आपके टाइम का, शुक्रिया आप के इस मोहब्बत का जो आप इस शो के साथ करते हैं। डक्ट टाइम के बारे में मैं आपको बता दूं, उनका गिव अवे है, सो आई एम गोना लेट देम लेट यू नो अबाउट द बिजनेस। उनका उनकी प्रेजेंस जो है डैलस में अभी 1 साल हुए हैं उनको। सो ऑन द ओकेजन ऑफ देयर फर्स्ट एनिवर्सरी इन डैलस दे आर गिविंग अवे अ सर्विस दैट यू मे बी एबल टू विन फॉर अ ड्राई वेंट क्लीनिंग फ्रॉम डक्ट टाइम। जी हाँ, तो वो अपने फर्स्ट बर्थडे पर आपको एक छोटा सा गिव अवे देना चाहते हैं, जहाँ पर आप उनकी एक सर्विस, ड्राई वेंट क्लीनिंग की जो सर्विस है वो जीत सकते हैं। और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनका नाम है जीतू पटेल। जी हाँ, मुझे हंसी आ गई बिकॉज़ मैंने कहा कि आप जीत सकते हैं, और आप जीतू पटेल के साथ अपना कांटेक्ट बनाएं 972-877-2500 और अपनी अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं इफ़ यू डोंट एंड अप विनिंग द गिव अवे। बट आप डेफिनेटली जीतू पटेल के साथ कॉन्टैक्ट करें, एंड ही विल लेट यू नो, इन्फॉर्म यू अबाउट देयर वंडरफुल सर्विसेज फॉर प्रोफेशनल डक्ट क्लीनिंग दैट हेल्प रिमूव डस्ट, दे क्लियर क्लॉग्ड वेंट्स, इम्प्रूव द एयर फ्लो विद इन योर हाउस, एंड रिड्यूस हिडन फायर हैजर्ड्स। डेफिनेटली ट्रस्ट डक्ट टाइम। जी हाँ, उनकी तरफ से गिव अवे का अभी टाइम हो रहा है, और जो मैं आपको एक छोटे से क्यू दूंगी, एक हिंट दूंगी, एंड देन यू हैव टू गेस द नेम ऑफ द एक्ट्रेस। इट्स वेरी सिंपल, आपको पता चल जाएगा क्विकली। फ़ोन नंबर है 972-235-5555, और इस फ़ोन नंबर पे कॉल करना है आपने मुझे। इफ़ यू आर द फर्स्ट कॉलर गिविंग मी द राइट आंसर, यू विल विन दिस गिव अवे फ्रॉम डक्ट टाइम। जी हाँ, तो ये एक्ट्रेस हैं, इनका डेब्यू हुआ था 90s में, लेट 90s में। ओह गुडनेस, प्लीज डोंट कॉल मी येट, मैंने अभी क्वेश्चन नहीं पूछा, बट लेट्स हियर फ्रॉम दिस कॉलर। गुड मॉर्निंग, यू आर लाइव ऑन एयर। आई हैवन्ट आस्क्ड यू द गिव अवे क्वेश्चन। ये देखिए पहले ही आप लाइन में लगना शुरू कर देते हैं, बट लेट मी जस्ट आस्क द क्वेश्चन, इट इज सो सिंपल। तो ये जो है एक्ट्रेस हैं, एंड इनका डेब्यू लाइक आई सेड लेट 90s में हुआ था। इनका असली नाम तो, फर्स्ट नेम तो कुछ और था, एंड देन जिस डायरेक्टर ने इनको डेब्यू दिया तो उन्होंने इनका नाम चेंज कर दिया था, एंड दैट्स हाउ वी नो हर। तो मैं गाना प्ले करती हूँ, आई एम ट्राइंग टू से थिंक मैं और क्या बोलूँ। ये जो है इनके पेरेंट्स, जो फादर हैं इनके, वो उत्तर प्रदेश को बिलोंग करते हैं, और इनकी मदर जो हैं वो हैं, तो वैसे इनकी मदर नेपाली ओरिजिन की, बट शी इज़ फ्रॉम दार्जिलिंग। जी हाँ, दार्जिलिंग में बहुत सारे नेपाली हैं जो वहाँ पर रहते हैं। सो इनकी मदर दार्जिलिंग की हैं, पर उनका जो है नेपाली ओरिजिन है, और इनके फादर उत्तर प्रदेश के हैं। लेट मी प्ले दिस सॉन्ग, देन यू टेल मी व्हाट her name is. So, chaliye, I'm not going to tell you the name of the film, the name of the song, and try to just listen to the song and guess. Agar aap bina research kare guess karenge, that will really just be more wonderful. So, here is the song, and then we will talk more about her. Let me know the name of this actress. इस एक्ट्रेस का नाम बता दीजिए। गुड मॉर्निंग, यूर लाइव ऑन एयर। हेलो, आपने गाना सुना है? गुड मॉर्निंग, यूर लाइव ऑन एयर।
1: हाँ जी, महिमा चौधरी।
0: हाउ डिड यू नो? मैंने कौन आपको कैसे पता चला? अभी तो मैंने गाना भी नहीं शुरू किया, आई मीन थोड़ा सा शुरू किया।
1: नहीं, वो म्यूजिक शुरू हो गया थी, म्यूजिक शुरू हो गया था।
0: तो ये कौन सा गाना है, चलो बताओ कौन सा गाना है?
1: नहीं, बट आई नो दैट दिस इज यू नो, पहले गाना सुनाने से पहले भी मेरा इंस्टिंक्ट बोल रहा था कि महिमा चौधरी के बारे में बोलने वाले, क्योंकि आई नो दैट शी हैज डेब्यूटेड इन द लेट 90s एंड हर नेम वाज नॉट महिमा इनिशियली। आई मीन या क्योंकि यम से उन्होंने करना था अपने यू नो माधुरी दीक्षित एंड देन मनीषा कोइराला देन महिमा चौधरी, तो महिमा करना था उनको।
0: मीनाक्षी शेषाद्री, माधुरी, मनीषा एंड नाउ एम, वेल नॉट नाउ। तो और कौन से क्लूज थे जो आपको लगा कि ये महिमा ही होगी?
1: नहीं, आई नो दैट लिटिल बिट फॉर बैकग्राउंड, शी इज यू नो नेपाली बैकग्राउंड है, बल्कि आपने बताया था तो आई कुड गेस दैट।
0: यू कुड गेस। एंड अनदर फन फैक्ट अबाउट दिस ब्यूटीफुल टैलेंटेड एक्ट्रेस इज आज इनका जन्मदिन है, सितंबर 13, सो दैट इज व्हाई आई थॉट,
1: आई डिडंट नो दैट दिस वाज
0: या
1: बर्थडे होगा आज।
0: हां जी, तो गाना आपने बताया नहीं मुझे कौन सी मूवी का, डिड यू ट्राई टू गेस?
1: आईदर इट कुड बी द फर्स्ट मूवी शाहरुख खान के साथ, आई एम नॉट श्योर, बट आई नो
0: नहीं ये सॉन्ग बागबान का मैंने लगाया था। ओके, सो यू डिड गेट द राइट आंसर। आप मुझे अपना नाम बता दीजिए, फर्स्ट नेम बोल, टेल अस on air and then I will speak to you off air so I can forward your information to the back office here and they will have send your name to duct time giveaway to duct time.
1: Should I be on this phone or should I call you back?
0: नहीं, आप अभी तो अपना नाम on air full name बता दीजिए and then stay with me. I'll speak to you off air then.
1: Mohammad Iqbal.
0: Mohammad Iqbal, ठीक है। All right, so just stay here. I'm going to speak to you off here because I will take some of your details and then I will let you know how you can get your giveaway. So congratulations, Mohammad Iqbal. आपने जीता है डक्ट टाइम की तरफ से गिव अवे। वेल, दिस सॉन्ग डेफिनेटली महिमा चौधरी ही है आंसर, राइट आंसर। आज इनका जन्मदिन है, सो दिस सॉन्ग इज फ्रॉम बागबान। इसके बाद जो मैं प्ले करूंगी सॉन्ग वो होगा परदेस फिल्म का, जिसमें उनका डेब्यू था। सो हियर यू गो।

इस महबूबा का नाम कुसुम गंगा जिस फिल्म में था परदेस, उसी फिल्म से इनका डेब्यू हुआ था. एंड द अनदर ग्रेट डायरेक्टर सुभाष घाई जिन्होंने इनको लॉन्च किया था. आगे चलकर मुक्ता आर्ट्स जो उनकी प्रोडक्शन कंपनी है, उन्होंने महिमा चौधरी को और भी फिल्मों के लिए साइन किया था, लेकिन फॉर सम मैटर और द अदर महिमा after signing those films or during the while the talks were going on, she declined because she just did not want to silo herself just to that production house. जो है उन्होंने फिर एक बहुत बेहतरीन फिल्म है which I feel she should not have broken the contract, or she should have just went ahead and sign the film contract, because जब उन्होंने नहीं किया तो उन्होंने एक बहुत बेहतरीन फिल्म को लूज़ कर दिया, and that was ताल. ताल definitely became wonderful hit in the career for Aishwarya Rai. लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि अगर महिमा कर लेती तो उनका करियर और भी स्काई रॉकेट हो जाता. नो डाउट शी इज़ टैलेंटेड, नो डाउट शी इज़ क्वाइट गुड लुकिंग. इन्होंने जो है दार्जिलिंग में कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट था, वहाँ ये जीती थी. दिस वॉज मिस दार्जिलिंग टाइटल दैट शी वन. एंड देन शी इज़ इनकी एजुकेशन भी अच्छी है, दार्जिलिंग में ही ये कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी हैं. एंड आई थिंक इनके फादर की टी एस्टेट्स हैं, टी गार्डन्स हैं. और जो है देन ऑफ कोर्स शी मेड हर वे इनटू द सिटी कॉल्ड बॉम्बे. वहाँ पर इन्होंने अपना छोटे पर्दे पर काम किया एज अ वीजे. ऋतु चौधरी के नाम से ये जानी जाती थी. एंड देन जब इनको ब्रेक मिला सुभाष घाई की तरफ से, शी वॉज वेरी वेल नोन, एंड इवन अप टू दिस डे शी इज़ नोन एज महिमा चौधरी. टुडे September 13th, 1973 is when she was born in the beautiful city of Darjeeling in West Bengal. इनके हिस्से एक और बहुत अच्छी फिल्म आई थी इन विच शी वॉज द सपोर्टिंग एक्ट्रेस, तो ये वाला सॉन्ग उसी फिल्म का, फिल्म का नाम धड़कन. हैप्पी बर्थडे टू महिमा चौधरी.

0: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? MyTime Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit MyTimeEquity.com or call 972-330-2771.
1: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
2: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels, India's finest, Dallas's newest.
3: Call 857-891-8942 today.
4: पनीर मंचूरियन का नाम तो सुना होगा पर चिली पनीर बाओ कहानी में ट्विस्ट
5: चिकन टिक्का पुरानी मोहब्बत बट बुराडा चिकन टिक्का न्यू लव
4: एंड पिस्ताचियो लैम्प चॉप्स
5: फुल ऑन फ्लेवर का फ्यूजन
6: That's Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irving. Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.
7: Dallas has its own superheroes. Fighting dust, clogs, blocked vents, and hidden fire hazards every day. And now, the superheroes of ducts are turning one. Duct Time celebrates its first anniversary in Dallas. For Duct Time services, call Jeetu Patel at 972-877-2500 and book your appointment today for a cleaner, safer, and fresher home.
8: How may I help you?
9: Hello, mere relatives aa rahe hain. Everyone's asking lunch mein kya hai?
8: Fikar not. We have the perfect solution.
3: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special. 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
10: Hello Texas Parivar, where do you go when bank says no? Are you self-employed and are you struggling with your qualification? Yes, we have loan options for you. So call KJ Kamna Ko at 214-845-4189 kyunki aapka bharosa hi meri pehchan hai and this 926641.
11: साइन
12: मिलना मुश्किल है लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना उसका सिग्नेचर मिल गया सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो फेमस निहारी सिजलिंग ग्रिल्स क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो विजिट signaturecuisine.net सिग्नेचर क्विजिन हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर
13: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस चॉकटाउ कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस पोकर हो या ब्लैक जैक एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए लकी बन जाइए चॉकटाउ कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट एंटरटेनमेंट लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली मस्ट बी 21 इयर्स older to game.

Welcome back. You are tuned in to 104.9 FM Fun Asia Radio, and this is RJ Akroop welcoming you all once again. Thank you so much for your time, for your phone calls, and for your participation. मैंने गिवअवे पूछा था, आपके फ़ोन कॉल्स आए, सही आंसर मिला, एंड हमें विनर भी मिल गए, एंड उनकी इन्फॉर्मेशन जो है मैंने यहाँ पर बैक ऑफिस में ट्रांसमिट कर दी है, ताकि जो है हमारे विनर का नाम ऑलरेडी जो स्पॉन्सर हैं यानी कि डक टाइम उनके पास चला जाए, एंड वो जो है अपना क्लेम कर सकें गिव अवे. सो थैंक यू सो मच. 10 बजे तक ये शो आता है, 9:36 हो रहे हैं स्टूडियो की घड़ी में. 972-235-5555 आई विल स्टिल बी टेकिंग योर फोन कॉल्स. Regardless, if you have a song request or you don't, just call me and let me know how you are doing. Hoko, jo hai, hamara Indian restaurant, yahan par Indian Kitchen, is show ko sponsor karte hain. They are a wonderful restaurant and they bring the taste of one of the very well-known food brands in India. Ab Frisco mein aa chuke hain chana puri and sandwiches, aur inki jo curries hain wo bhi badi popular hain. So definitely try them. Inka cold cocoa bahut popular hai. If you are a student, you will get 20% discount with a valid student ID. एंड अगर आप कोई जो है आप जाना चाहते हैं वहाँ पर लंच के लिए, मंडे थ्रू फ्राइडे आप ऑफिस आवर्स में जाएं, एंड इफ़ यू शो योर एम्प्लॉई कार्ड तो आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा. इज इन दैट वंडरफुल. तो ये डबल जो है, स्टूडेंट हैं अगर आप तो 20% ऑफ ले लीजिए, अगर आप एम्प्लॉई हैं सो यू शुड बी कैरिंग योर एम्प्लॉई कार्ड, योर बैज, तो फिर आप वो दिखाएंगे तो आपको मंडे थ्रू फ्राइडे ड्यूरिंग लंच आवर्स आप हॉको पे जाएंगे तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा. सो देयर फूड आइटम्स आर पॉपुलर. दे आर फ्रॉम गुजरात, अहमदाबाद से आए हैं और यहाँ पर छा गए हैं. दिस इज़ हॉको किचन इन फ्रिस्को. मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है, उनका जो है अभी उनका जन्मदिन और मेरी बड़ी बेटी का जन्मदिन सेम दिन पे आता है. सो आई नो दैट शी इज़ ट्यून्ड इन. मेरी फ्रेंड जिनका नाम रिखी है, और उन्होंने अभी मुझे मैसेज किया. दैट इज़ सो स्वीट ऑफ हर. आपको बर्थडे, जन्मदिन की मुबारक बात रिखी, एंड आपका बर्थडे एंड मेरी बड़ी बेटी का बर्थडे सेम डे पे होता है, एंड वी always make it a point to wish each other. So this year was no different. Aap dono ke liye ye wala song, you know, meri beti aapki student bhi reh chuki hai when she was little, so she used to learn dance kathak from you. To ye wala song birthday girls ke liye, jinka birthday September 9th ko aata hai.

थैंक यू वज़ीर साहब, आपकी चॉइस का इतना अच्छा सॉन्ग. एंड हैप्पी बर्थडे टू रिकी, सितंबर 9th, एंड आल्सो टू माय डॉटर. बोथ ऑफ देम शेयर द सेम बर्थडे. और जो है रिकी मेरी फ्रेंड हैं. थैंक यू रिकी, आपने कॉल किया. आपको बिलेटेड हैप्पी बर्थडे. अब सोनू निगम की बात करते हैं, बिकॉज एक तो वो हमारे टाउन में आ रहे हैं, हमारी बड़े सारे शहर में आ रहे हैं. डैलस ही इज़ कमिंग टू आवर सिटी, और अपनी आवाज़ का जादू जो है उनका फैल जाएगा. ऑलरेडी ही इज़ सच अ लव्ड प्लेबैक सिंगर. उनकी पर्सनालिटी, उनका टैलेंट, उनकी आवाज़, उनकी वर्सेटिलिटी, सब कुछ ही उनका कमाल का है. एंड द नंबर ऑफ ईयर्स ही हैज़ been in the industry, not only just been there, but he has been ruling the hearts and the minds of our of the industry, the people that love the Hindi music. Sonu Nigam Revolution concert hai unka, aur ye hone wala hai September 26th ko 8:30 baje, Credit Union of Texas Event Center in Allen. आपके पसंदीदा सॉन्ग्स जो वो गाएंगे सोनू निगम, और आपको जो इतने ज़बरदस्त जो वाइब्स मिलेंगी वहाँ पर, वो तो बहुत आइकॉनिक होने वाला है. दिस इज़ गोइंग टू बी लाइव इन कॉन्सर्ट सोनू निगम. द कॉन्सर्ट इज़ रेवोल्यूशन. आप शोज़ के, इस शो के लिए और जानकारी और इस शो की टिकट्स के लिए 855-360-SHOWS, सो SHOWS ये है फ़ोन नंबर. टिकट मास्टर पे भी ये टिकट्स अवेलेबल हैं. सो डेफिनेटली बाय योर टिकट फॉर दिस कॉन्सर्ट रेवोल्यूशन सोनू निगम लाइव ऑन सेप्टेम्बर 26th at 8:30, and this is going to be here in Allen, well, close to McKinney where we are. Allen aur Credit Union of Texas Event Center, jo ki kafi prominent landmark hai yahan par Allen mein, wahan par aa rahe hain Sonu Nigam 26 September ko 8:30 baje aapke liye. To zarur apne tickets le lijiye. Exclusive media partner, Fun Asia Network.

0: PMJ Jewels, the pride of South India. जी हाँ, दे आर हियर इन फ्रिस्को इन योर टाउन और बहुत बेहतरीन ज्वेलरी लेकर आए हैं आपके लिए. इनका जो स्टोर है बहुत सुंदर है, आप जाकर ज़रूर चेकआउट कीजिए. दे ब्रिंग टू अस 60 ईयर्स ऑफ ज्वेलरी एक्सलेंस एंड टाइमलेस इंडियन क्राफ्ट्समैनशिप थ्रू देयर वंडरफुल पीसेस ऑफ ज्वेलरी. डायमंड की ज्वेलरी आपको मिलेगी इनके पास एंड गोल्ड एज वेल एज अगर घर में शादी है तो आपको PMJ ज्वेल्स के पास जो है ब्राइडल ज्वेलरी कलेक्शन भी बहुत अच्छी है जो आपको मिलेगी. यू शुड विजिट देयर स्टोर विच इज़ इन फ्रिस्को. एंड ये जो है इधर ट्रेडिशनल ज्वेलरी एज वेल एज मॉडर्न ज्वेलरी सब आप यहाँ पर वंडरफुल पीसेस, एक्सक्विजिट कलेक्शन और बेस्ट वैल्यू फॉर योर मनी. एंड दे हैव लाइफ टाइम एक्सचेंज, सो एनी टाइम ड्यूरिंग योर लाइफ टाइम और द लाइफ टाइम ऑफ योर ज्वेलरी यू वॉन्ट टू एक्सचेंज इट, PMJ ज्वेल्स वुड डू दैट हैप्पीली. सो PMJ ज्वेल्स दे आर लोकेटेड इन फ्रिस्को. दे हैव ट्रेडिशनल, मॉडर्न एज वेल एज ब्राइडल ज्वेलरी कलेक्शंस एंड देयर पीसेज आर सो एक्सक्लूसिव, सो वंडरफुल दैट यू आर डेफिनेटली गोइंग टू लव देयर ज्वेलरी. PMJ ज्वेल्स आर नाउ इन फ्रिस्को. ये जो है महेश बाबू और उनकी बेटी एंडोर्स करते हैं ये ब्रांड, सो दे आर वेल नोन. एंड आप भी ज़रूर जाइए, विजिट कीजिए. इनकी जो है गोल्डन पीकॉक कलेक्शन बहुत अच्छी है और ब्राइडल कलेक्शन बहुत अच्छी है, सभी पीसेज इनके बहुत अच्छे हैं. सो सोनू निगम की बात हो रही है, टॉपिक चेंज कर रही हूँ. सोनू निगम की बात हो रही है बिकॉज ही इज़ कमिंग टू टाउन ऑन September 26th. हियर इज अनदर वन इन हिज वॉइस
1: कौन है
0: अलॉन्ग विद अलका याग्निक.
1: मुझे नहीं देखा, हु इज ही?

बड़ी पॉपुलर हो गई थी ये फिल्म पू. ये जो कैरेक्टर था इस फिल्म में करीना कपूर का, कभी खुशी कभी गम में, काफ़ी मेमोरेबल रहा. एंड इसमें ऋतिक रोशन, आवाज़ें अलका याग्निक एंड सोनू निगम, जो कि अभी सितंबर 26 को शिरकत कर रहे हैं हमारे डालस में, एलन में आ रहे हैं स्पेसिफिकली. एंड सितंबर 26 इज़ द डेट दैट ही इज़ गोइंग टू बी इन टाउन. हमारे लिसनर सूर्य, जो कि इस टाइम पर एयरपोर्ट जा रहे हैं टू पिकअप एंड वो टू वेलकम एंड पिकअप हिज वाइफ दैट इज़ कमिंग बैक फ्रॉम आई एम अस्यूमिंग इंडिया से शायद वापस आ रही होंगी अभी. तो सुमा जी के लिए ये वाला सॉन्ग सूर्य ने रिक्वेस्ट किया है. एंड आई एम गोना प्ले दिस सॉन्ग. सोनू निगम की ही आवाज़ है. एंड लुकिंग एट द क्लॉक, दिस वुड बी द लास्ट सॉन्ग ऑफ माई शो. इसी सॉन्ग के साथ लेती हूँ आज के लिए इजाज़त. अभी तो मैं आपको कहती हूँ बाय बाय, लेकिन नेक्स्ट संडे यहीं पर होंगी 7 बजे. आप मुझे अर्लियर कॉल कर लीजिए, कर लिया करो, सो दैट फिर मैं आपको मना ना करूँ कि मैं आपकी प्ले नहीं कर सकती चॉइस, बिकॉज़ द टाइम देन इज़ सो लेस. इफ़ यू कॉल मी एट 9:55 देन आई कैन नॉट इनकॉर्पोरेट योर चॉइस ऑफ सॉन्ग. बट एनी वे सूर्या, दिस इज़ फ्रॉम यू टू योर वाइफ सुमा. एंड इस सॉन्ग के साथ लेती हूँ आज के लिए इजाज़त. दिस इज़ आरजे एकरूप. आई एम साइनिंग ऑफ फॉर राइट नाउ. आई विल सी यू नेक्स्ट संडे. मधुलिका आएंगी अभी 10 o'clock एंड शो बी हियर विद यू फॉर 12 Until 12 o'clock, आप अपना संडे एंजॉय करें, एंजॉय द रेस्ट ऑफ द डे. एंड टुमारो अगेन मंडे, द नेक्स्ट वीक स्टार्ट्स. सो गुड विशेस फॉर दैट. आई विल सी यू नेक्स्ट संडे. बाय बाय.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
3: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में
2: दैट मैजिक रिमूवल हो लव एंड रिलेशनशिप इश्यूज हो गेट ट्रस्टेड सॉल्यूशंस विद 100% प्राइवेसी
3: थाउजेंड्स की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से नाउ इट्स योर टर्न समस्या का पक्का समाधान एस्ट्रोलॉजर ईश्वर कॉल नाउ 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com.
4: We need to talk.
5: अब क्या हुआ?
4: Nothing. It's not you.
5: Oh no.
4: It's the distance.
5: Distance? We live 10 minutes apart.
4: Arey, it's actually not you. It's that driving all the way for my Sal's Hot Chicken.
2: Irving, that long-distance relationship is officially over. Sal's Hot Chicken is now in Irving. Your crispy chicken, loaded sandwiches, and bold Sal's flavors just got a whole lot closer. Sal's Hot Chicken, Irving. Same obsession, less distance.
6: Paal se aap, straight from the heart. Kal Hindi Hindi bol.
7: You know my voice on the radio. Now let me be a voice you can trust in real estate. Main hoon Navneeta Khemka, realtor with Keller Williams Realty. Buying, moving or selling a home? I bring market knowledge, creative marketing and personal commitment to your journey. Because to me, real estate isn't just about properties. It's about you, mere dosto, your possibilities and your new beginnings. Every home has a story. Let's create yours together.
8: Call Navneeta Khemka at 347-449-4242.
6: फोन उठाइए नंबर दबाइए 347-449-4242
9: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम चिकन तंदूरी मलाई चिकन टिक्का पनीर टिक्का मोमो या सोया चाप अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन
10: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
11: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
10: Kya matlab?
11: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
10: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे
11: उरा डेट रिलीफ इज वन ऑफ द लीडिंग डेट सेटलमेंट कंपनीज दे डोंट चार्ज अ सिंगल पेनी अंटिल आवर डेट इज सेटल्ड एंड दे हैव 100% मनी बैक गारंटी कॉल तो करो 888-888-9914
10: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम
12: डोंट लेट डेट रुइन योर लाइफ विजिट ura.org और कॉल 888-888-9914 एंड टेक कंट्रोल ऑफ योर फाइनेंशियल फ्यूचर
13: भूख लगी है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है
14: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स रिच अवधि फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू ऑल अंडर वन रूफ एट पेज 3 ईटरी ऑनेस्टली ये सिर्फ खाना नहीं है इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग
2: अ क्विक बाइट अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर यू गो टू पेज 3 हब 121 मैकिनी
15: सादिया
16: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है
17: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन
2: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस
18: तुमसे मिलके दिल का है
17: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन
2: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क
19: डालस की धड़कन 104.9 FM फन एशिया रेडियो

वेलकम, नमस्कार, खुशामदीद, फन एशिया रेडियो 104.9 एफएम पर मैं मधुलिका आप सभी का जस्ट चिल में करती हूँ हार्दिक स्वागत। वेल, जस्ट चिल में हम करेंगे एज द नेम सजेस्ट जस्ट चिल। मैं दूंगी आपका साथ दोपहर के 12 बजे तक। कहना चाहूंगी अ बिग थैंक यू टू एक रूप फॉर अ वंडरफुल शो दैट शी ब्रॉट टू अस टुडे मॉर्निंग टिल 10 AM। वेल, आज कुछ लोग हड़ताल का तीज सेलिब्रेट कर रहे हैं और कुछ लोग हड़ताल का तीज कल सेलिब्रेट करेंगे, यानी कि वो आज दौज सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये जो हड़ताल का तीज है ना, इट्स वेरी क्लोज टू व्हाट करवा चौथ इज। इनफैक्ट इट्स इवन लिटिल मोर स्ट्रिक्टर, बिकॉज जो एक्चुअली में हड़ताल का तीज जो बिल्कुल यू नो रूल्स फॉलो करके बनाते हैं, वो तो रात को भी खाना नहीं खाते, वो तो नेक्स्ट डे खाना खाते हैं। So well, I would like to dedicate this particular segment to Bollywood songs or Hindi pop album songs which are celebrating Sajna or Sajni, yani ki lyrics mein Sajna ya Sajni aana chahiye, right? So Ma Parvati aur Bhagwan Shiv ki kripa se aapke jeevan mein prem, sukh, samriddhi aur saubhagya sadaiv bana rahe। आपका दाम्पत्य जीवन खुशियों से भरा रहे और परिवार में हमेशा मंगलमय वातावरण बना रहे। हड़ताल का तीज एवं दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को।

Well, that was taken from Maine Pyar Kiya. And yes, we are celebrating Hartal Ka Teej and Doj today. So, Hartal Ka Teej jo hai na, naam ki khas kahani hai. Basically, mana jata hai ki harat ka arth hota hai har lena. And Alika ka matlab hota hai sakhi. So, hua ye tha ki Parvati ki jo sakhi, Parvati ki jo friend thi, unhone unke pita ke ghar se, matlab पार्वती का जो घर था उनके घर से पार्वती की फ्रेंड ने उनको हर लिया था एंड एक वन में एक फॉरेस्ट में ले गई थी ताकि वो अपनी इच्छा के अनुसार भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए तप कर सके. बेसिकली पार्वती के जो पिता थे वो कहीं और पार्वती की शादी कर रहे थे एंड पार्वती ने शिव जी को ही अपना पति मान लिया था एंड शी वॉज वेरी अपसेट कि अब मैं क्या करूँ. तो उनकी जो सखी उनकी जो फ्रेंड थी उन्होंने उनको हर लिया, उनको किडनैप करके फॉरेस्ट में ले गई थी कि तुम यहाँ पे अपना तप करो और शिव जी को खुश करो सो दैट यू कैन गेट शिव जी एज पति आफ्टर योर तप. सो दैट इज़ वाई द नेम हर तालिका तीज, यानी कि हरत यानि हरना और आलिका यानि सखी. सो हर तालिका.

Well, that was taken from the movie Khalnayak. जी हाँ, इस सेगमेंट में हम सुन रहे हैं वो गाने जिनकी लिरिक्स में सजना, सजनी, साजन, यू नो, ये वर्ड्स आते हों. एंड बिफोर आई प्ले द नेक्स्ट वन, बड़ा ही प्यारा सा गाना है वो, इट्स अ रीमिक्स बेसिकली. लेकिन उसके पहले मैं आपको ड्रीम होम मॉर्गेज के बारे में बताना चाहूँगी, क्योंकि होता यही है कि आप बस सोचते रह जाते हैं कि काश कि मैं ये घर लेता, यू नो, काश मेरे पास इतने पैसे होते, या काश ये या काश वो. तो भाई ये काश जो है वो सच होने वाला है, बिकॉज योर ड्रीम होम मे बी क्लोजर देन यू थिंक. जी हाँ, 1998 से ड्रीम होम मॉर्गेज ने बहुत सी फैमिलीज को नेशन वाइड हेल्प किया है विद पर्सनलाइज्ड मॉर्गेज सॉल्यूशंस फॉर बाइंग एंड रीफाइनेंसिंग. क्योंकि कई बार होता है कि सिर्फ बाइंग इज नॉट इनफ, आप फिर कुछ टाइम बाद अपने उस घर को रीफाइनेंस भी कराना चाहते हैं. सो ये सब वो करते हैं. आप उन्हें कॉल करें, द नंबर इज 972-245-5626, और विजिट ड्रीम होम mortgage.com. Dream Home Mortgage, making dream home happen. And that's Dream Home Mortgage.

ऑल राइट, दैट वॉज सजना है मुझे सजनी के लिए. आज हम हड़ताल का तीज कर रहे हैं सेलिब्रेट, या दौज भी कह लीजिए सेलिब्रेट कर रहे हैं. सो ये व्रत जो है ये माता पार्वती को समर्पित है. जी हाँ, इसमें गॉडेस पार्वती की पूजा की जाती है. माना जाता है कि पार्वती जी ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए एक कठोर तप किया था, कठोर तपस्या की थी, और इसीलिए तीज को सुहाग और वैवाहिक सुख से जोड़ा जाता है. और इसीलिए जैसे करवा चौथ में हम व्रत रखते हैं फॉर आर हस्बैंड्स लॉन्ग लाइफ एंड प्रॉस्परस लाइफ, सिमिलरली हड़ताल का तीज का भी ये जो व्रत है इज़ फॉर मैरिटल ब्लिस एंड फॉर अ लॉन्ग लाइफ एंड अ हेल्दी एंड प्रॉस्परस लाइफ फॉर योर हस्बैंड. तो इसमें भी जो पत्नियां हैं ये पूरे दिन ना तो खाती हैं ना कुछ पीती हैं, एंड शाम के वक्त गौरा जी की पूजा करके सिंदूर अपने माथे पे लगाती हैं. पहले वो पार्वती जी को सिंदूर लगाती हैं, फिर खुद लगाती हैं, एंड रात में भी खाना नहीं खाती. इनफैक्ट दे ईट द नेक्स्ट डे. सो दिस इज अ लिटिल बिट मोर स्ट्रिक्टर व्रत देन करवा चौथ. लेकिन हाँ, खूब सजती हैं, खूब मेहंदी वेहंदी लगती है, चूड़ियाँ पहनी जाती हैं, रंग अच्छे रंग भरे कलरफुल क्लोथ्स, कलरफुल साड़ियाँ लहंगे ये सब पहने जाते हैं, एंड बहुत ही ज़ोर शोर से सेलिब्रेट किया जाता है हड़ताल का तीज को भी. एंड यस, इन दिस सेगमेंट वी आर लिसनिंग टू सॉन्ग्स जिनमें की जिनकी लिरिक्स में सजना, साजन, सजनी इस तरह के वर्ड्स आ रहे हों. सो अगर हैं ऐसे कोई वर्ड्स जो गानों में हों और आपको बहुत सुनने का मन कर रहा है, देन द स्टूडियो नंबर इज 972-235-5555. मैं हूं मधुलिका, दूंगी आपका साथ इन जस्ट चिल टिल नून. जी हाँ, जस्ट चिल में हम करते हैं एज द नेम सजेस्ट, जस्ट चिल. सो स्टूडियो का नंबर एक बार फिर 972-235-5555. इफ़ यू डू सेलिब्रेट हड़ताल का तीज या फिर कोई ऐसे गाने हैं जिनकी लिरिक्स में सजना या सजनी या साजन आते हों तो ज़रूर कॉल करके बताइए, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू प्ले दो सॉन्ग्स फॉर यू. द नेक्स्ट वन इज टेकन फ्रॉम द मूवी साजन.

0: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
1: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
2: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
3: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
2: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
4: हुजूर, आपको चुनना होगा हम या ये बिरयानी।
5: बेगम, मोहब्बत अपनी जगह लेकिन बिरिस्ता की हैदराबादी बिरयानी अपनी जगह।
4: आखिर क्या है इस बिरयानी में?
5: दम में नरमी, मसालों में जादू और हर निवाले में नवाबी स्वाद।
6: प्रेजेंटिंग बिरिस्ता हाउस बाय प्रिज्म बार एंड ग्रिल, ऑथेंटिक हैदराबादी फ्लेवर्स एंड अ ट्रूली नवाबी एक्सपीरियंस, नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स, डिलीशियस डेजर्ट्स एंड मेनी मोर टू एक्सप्लोर। डेंटन्स फेमस बिरिस्ता हाउस इज नाउ इन फ्रिस्को, 6377 कस्टर रोड, फ्रिस्को, टेक्सास।
7: हैप्पी आवर्स मंडे थ्रू फ्राइडे फ्रॉम 3 PM टू 7 PM।
6: बिरिस्ता हाउस, रिचनेस ऑफ बिरयानी ब्लिस।
8: ये तारा वो तारा हर तारा।
7: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर, होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
9: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
7: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
2: Everyone's mind at the moment in Dallas, cause the hottest destination to party with your tribe is in town. Mirage Lounge, a premium lounge offering hookahs, bites, crafted cocktails and live music and DJ nights. And guess what? A happy hour from 11 AM to 5 PM Monday to Thursday with hookahs at $15.99 and shots at $4.99 each. Plus, ladies' night and college nights bhi.
7: Visit Mirage Lounge at McKinney Ranch Parkway, cause miracles happen in Mirage.
8: ये तारा वो तारा हर तारा।
7: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर, होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
10: How may I help you?
11: Hello, मेरे relatives आ रहे हैं. Everyone's asking lunch में क्या है?
10: Fikar not. We have the perfect solution.
7: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25+ dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 PM to 3 PM. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
11: Ajji, sunte ho, soch rahi thi bete ki shaadi India mein kare?
12: India mein? To yahan jo friends aur relatives hain, wo kaise attend karenge?
11: Par yahan sare arrangements manage karna bhi to kitna mushkil hoga.
12: Hello, tum Dallas mein ho, yahan koi bhi event karna super easy hai. Especially jab Vanessa events ka saath ho.
11: Sach mein? Sab sambhalenge?
12: Are sab kuch. Wedding ho, housewarming, graduation, you name it, they deliver. Venue, photography, hospitality, sab kuch ek hi jagah. Signature events ka decor aur khana by the renowned Basera Grand only.
7: Call Hari Basera on 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.
13: Of Dallas, heart to heart, Fun Asia.
14: जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल, Fun Asia 104.9 FM.

0: भगवान की स्पीड से ज्यादा पंखा चलाओ तो इनको ठंड लगता है।
1: शादी से पहले कभी लव नहीं हुआ, शादी के बाद कभी लव नहीं मिला।

That was Rinku Bhabhi saying, मेरे हस्बैंड मुझको प्यार नहीं करते. वेल, ये कंप्लेन कई बीवियों की होती है, बट मैं यही बोलूंगी कि हर किसी का कुछ एक्सप्रेस करने का ना तरीका अलग होता है. तो भाई ऐसे ना कहें, आपके हस्बैंड ज़रूर आपको प्यार करते हैं. अच्छा, अगर आप कोई कार या ट्रक एक्सीडेंट में फंस गए हैं, कोई स्लिप या फॉल इंसिडेंट हो गया है, एंड यू डोंट नो व्हाट टू डू, हु टू रीच आउट फॉर हेल्प, देन आई वुड से अटर्नी ओमर ख्वाजा को रखें याद. बिकॉज इफ यू आर इंजर्ड इन अ कार या ट्रक और स्लिप या फॉल एक्सीडेंट, देन यू नीड टू फोकस ऑन द हीलिंग while attorney Omar Khwaja will fight your case and get you the compensation that you truly deserve. And the best part, you do not pay anything till he wins the case for you. So aap attorney Omar Khwaja ko call kare. The number is 469-300-5046, or you can visit attorneyomar.com. That's attorneyomar.com.

Yes, we are celebrating Hartal Ka Teej today. And so Hartal Ka Teej ke pehle aati hai Dooj ya Dooj khele. Usme kya hota hai ki jo ye ladies hain, jo ye patniyan hain, ye khub sajti savarti hain and mehndi lagati hain, you know, chudiyan khareedti hain, naye kapde khareede jaate hain. And ये भी माना जाता है कि you know झूला झूलो चाट पकौड़े खाओ मतलब basically क्योंकि next day व्रत करना है तो उसके एक दिन पहले ये कहा जाता है कि भाई pamper yourself तो जो सासें हैं वो आप बहुओं को काफ़ी pamper करती हैं या आप खुद ही अपने आप को pamper कर लें अगर आप सास से कहीं दूर रह रहे हैं so that's the day दूज जो है वो वही दिन है जब आप अपने आप को अच्छे से pamper करें क्योंकि next day आपको रखना है व्रत तो अब जब कल व्रत रखना है तो खाने पीने की अगर बात चली है तो मैं आपको तंदूरी फ्लेम रेस्टोरेंट के बारे में बताना चाहूंगी जो कि गार्लैंड में लोकेटेड है एंड इज कंसिडर्ड द न्यू फ्लेवर डेस्टिनेशन फॉर ऑल स्पाइस लवर्स तो चटपटा कुछ खाना है देन यू नीड टू हेड टू तंदूरी फ्लेम रेस्टोरेंट बिकॉज यहाँ आपको सिजलिंग तंदूरी प्लेटर्स रिच करीज ऑल योर नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स विद होम स्टाइल पंच मिलेगा चाहे फिर वो स्मोकी तंदूरी कबाब्स हों या गर्मा गर्म नान वेल एवरी प्लेट फील्स लाइक अ celebration so do come and celebrate yourself today step in today and let tandoori flame serve you the kind of meal that turns an ordinary day into a feast to bhai main to kehti hu वैसे तो आज तीज त्योहार है ही बट ना भी हो तो क्या आप सेलिब्रेट करने को आपको कौन रोकता है सो डेफिनेटली गो एंड एंजॉय योरसेल्फ एट तंदूरी फ्लेम रेस्टोरेंट व्हिच इज लोकेटेड इन Garland. And the next one, well, that's a song request taken from the movie Om Shanti Om. Yes, we are listening to songs which have Sajan, Sajan, Sajani in those lyrics.

Well, that was a Dhoomdana taken from Om Shanti Om. जी हाँ, हम सुन रहे हैं वो गाने बॉलीवुड के या हिंदी पॉप एल्बम्स के जिनके लिरिक्स में सजना, साजन, सजनी ऐसे कुछ वर्ड्स आते हों. वी आर सेलिब्रेटिंग दूज एंड हड़ताल का तीज टुडे. सो इस व्रत की मान्यता यही है कि जो भी पत्नियां इस व्रत को करती हैं, दे डू इट फॉर द लंबी उम्र, सुखी वैवाहिक जीवन एंड परिवार की खुशहाली के लिए करती हैं. एंड इट्स वेरी सिमिलर टू करवा चौथ. एंड जो डिफरेंस है वो ये है कि इसमें पूजा के बाद भी आप कुछ खाना नहीं खाते हैं, आप नेक्स्ट डे कुछ खाते या पीते हैं. सो नो फूड, नो वाटर ऑन दैट डे व्हेन यू आर फास्टिंग. बट अगेन, अब बहुत से वेरिएशंस आ गए हैं इस व्रत के, लेकिन हाँ, जो ओरिजिनली जो लेडीज व्रत करती थी वो ना तो कुछ खाती थी ना ही कुछ पीती थी. एंड दे वुड डू इट ऑल फॉर द लॉन्ग लाइफ एंड प्रॉस्परस लाइफ ऑफ देयर हस्बैंड एंड द द परिवार. एंड ऑफ कोर्स खूब सस्ती सवरती हैं. एंड इट्स अ ब्यूटिफुल फेस्टिवल इफ़ यू सेलिब्रेटेड. इट्स रियली नाइस. सो विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी हड़ताल का तीज.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: रेस्टोरेंट चूज करना हो गूगल रिव्यूज, होटल बुक करना हो गूगल रिव्यूज, लेकिन बच्चों के डॉक्टर की जब बात आए तो एक ही रिव्यू सबसे इम्पोर्टेंट होता है, माँ का रिव्यू।
3: इसलिए डॉक्टर फरहाद हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ DFW चाइल्ड मॉम अप्रूव्ड पीडियाट्रिशियन फॉर 4 कंसेक्यूटिव इयर्स 2023 थ्रू 2026। मीट डॉक्टर निशात फरहाद एट पैशन हेल्थ पीडियाट्रिक्स, सर्विंग फैमिलीज एट फ्रिस्को एंड ऑब्री, स्टार्टिंग एट द एंड ऑफ ऑगस्ट। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, बिकॉज़ एवरी हेल्दी स्माइल बिगिंस विद ट्रस्टेड केयर। कॉल 214-666-6259 एंड शेड्यूल योर अपॉइंटमेंट्स टुडे।
4: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर।
5: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
6: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
7: इतना सब और प्राइस?
6: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन, समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
8: मैं हीरो।
9: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
10: Beta? 95% आए?
11: हाँ मम्मी।
10: गुड, अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
12: मेरा?
10: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
12: वो
13: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। AG Fintax helps you understand profitability, cash flow, tax planning, business growth through bookkeeping and CFO services. Visit agfintax.com. Call 972-618-8555. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
14: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
15: Your dream wedding deserves nothing but the extraordinary. Introducing Lux Wedding Expo, an exclusive luxury bridal showcase happening September 20th, 2026 at Frisco Hall. Discover everything you need to create your perfect celebration, from top designers, photographers, decor, jewelry and beauty experts to stunning venues and tastemakers, all under one roof. Lux Wedding Expo, presented by Flash Brush with Fun Asia Network as the media partner. Want to showcase your brand? Booths and sponsorships are available. Call 972-963-0954 today. Lux Wedding Expo, where your dream wedding begins.
16: Hi guys, this is Tiger Shroff. Enjoy Fun Asia Radio.
17: जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल फनेशिया 104.9 FM।

All right, that was a song request from Naveen. That was Bin Tere Sanam. We are celebrating Hartal Ka Teej. This is Madhulika lekar aayi hu Just Chill, jahan kar rahe hain hum, as the name suggests, Just Chill. Main dungi aapka saath dopahar ke 12 baje tak. Studio ka number 972-235-5555. Well, तीज का ये त्यौहार आपके जीवन में खुशियां और प्रेम की बहार लाए. हड़ताल का तीज की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं. एंड यस, दौज, हड़ताल का तीज के पहले आती है दौज, और उसमें जो लेडीज हैं, जो सुहागन हैं, वो खूब मेहंदी रचाती हैं एंड यू नो सजती संवरती हैं. इट्स अ ब्यूटिफुल फेस्टिवल इफ़ यू डू सेलिब्रेट, एंड इवन इफ़ यू डोंट, इट्स व्हाट्स द हार्म, यू नो, सजना संवरना तो अच्छी बात है, राइट? सो खूब मेहंदी लगाएं, हरी हरी चूड़ियाँ पहने एंड इन्जॉय.

That was taken from the movie Zubeda. जी हाँ, आज दौज, मतलब कुछ लोग आज दौज मना रहे हैं, कुछ लोग आज हड़ताल का तीज मना रहे हैं. तो अगर दौज की बात की जाए तो हड़ताल का तीज की प्रिपरेशन में जो सुहागन है, जो लेडीज, जो वाइफ्स हैं, दे रियली डेक अप, राइट? सो मेहंदी लगाती हैं, हरी हरी चूड़ियाँ खरीदती हैं, पहनती हैं, एंड लहरिया साड़ियाँ पहनना बहुत ही शुभ होता है. एंड ऑफकोर्स तरह तरह की बिंदी लगाती हैं, वो कहते हैं ना कि बिंदियाँ चमकेगी. सो डेफिनेटली उस दिन, आई मीन दौज और हड़ताल का तीज के दिन, जो ये सुहागन है, दे रियली डेक अप एंड ट्राई टू लुक एज प्रिटी एज दे कैन. ऑफकोर्स दे आर ऑलवेज गॉर्जियस, बट दे ड्रेस अप टू लुक एज प्रिटी एज पॉसिबल.

All right, yeah, that was taken from the movie अभिमान. और जैसा कि मैं हड़ताल का तीज और दौज के बारे में आपको बता रही हूँ कि यस, खूब बड़ी बड़ी या कलरफुल बिंदियाँ लगाई जाती हैं, मेहंदी लगाई जाती है, और ये भी शुभ माना जाता है कि आप झूले पर बैठे हैं, राइट. सो हड़ताल का तीज जो है हरियाली और प्रकृति का उत्सव है, राइट. तीज जो है ये सावन भादों के मौसम में आती है, जब प्रकृति एकदम हरी भरी होती है, और पेड़ों से पेड़ों पर जो झूले डालना इस मौसम की खुशी मनाने का हिस्सा है. एंड ये भी माना जाता है कि जैसे झूला ऊपर नीचे चलता है, जैसे जीवन में उत्साह, उमंग और सकारात्मकता जो है इससे जोड़ी जाती है बात. तो इसीलिए कहा जाता है कि दौज पर आप खूब सजें सवरें एंड झूले पर बैठें, बिकॉज इट्स कंसिडर्ड वेरी वेरी ऑस्पिशियस. एंड द नेक्स्ट वन टेकन फ्रॉम द मूवी लम्हे.

taken from the movie Lamhe. That was Meghare Megha. And भैया ये जो मौस मौस मॉनसून है, मौसम मौसम कह रही हूँ, ये जब सावन आते हैं या अभी जो वेदर चेंज होता है तो तबीयत भी थोड़ी सी नासाज हो सकती है. तो आपको बताऊँ मैं पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर के बारे में. अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है या पैशन हेल्थ आउट ऑफ नेटवर्क है, गेट अफोर्डेबल primary care with Passion Health Direct for just $85 a month, including primary care, preventive care, medication management, ya fir telehealth and much more. So aap unhe call ya text kar sakte hain. The number is 214-666-6259 or visit passionhealthphysicians.com. And you know, this program is not a health insurance, so basically eligibility and restrictions do apply, so you can definitely check them out. The number once again for Passion Health Primary Care is 214-666-6259.

के साथ रहे और जीवन खुशियों से भरा रहे। वेल विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी हड़ताल का तीज। वेल इस दिन, इस त्यौहार पर जो सुहागन हैं, जो पत्नियां हैं, वो करती हैं शिव और गौरा पार्वती की पूजा।

0: जैसा कि मैं आपको हड़ताल का तीज के बारे में बता रही थी कि कई जो सुहागिने हैं वो निर्जल व्रत भी रखती हैं. मतलब ऑफ कोर्स देर आर लॉट्स ऑफ वेरिएशंस. कई लोग सिर्फ नॉर्मल व्रत रखते हैं, कई लोग कुछ भी नहीं खाते, एंड एक्चुअली ओरिजिनली तो पानी भी नहीं पीते. एंड दैट्स अनदर वे ऑफ सेलिब्रेटिंग हड़ताल का तीज. आपको पता है हरा रंग जो है इस त्यौहार में बहुत ही खास माना जाता है, एंड वो इसलिए भी कि क्योंकि वो हरियाली से जुड़ा है, प्रकृति और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है. और इसीलिए सुहागने जो हैं वो दौज पर और हड़ताल का तीज पर एक तो खूब सस्ती सवरती हैं, एंड कोशिश करती हैं कि कोई हरे रंग की साड़ी, लहरिया साड़ी, या उस तरह की कोई बिंदी चूड़ियाँ हरे रंग की पहनी जाएं. सो दैट्स बिकॉज इट्स कंसिडर्ड वेरी वेरी ऑस्पिशियस.
1: Black is black. Black is black. Black is black.

ऑलराइट यस, अगर हड़ताल का तीज की बात करें तो ये पारंपरिक गीतों में अक्सर सखियां, मायके, सावन, प्रेम और शिव पार्वती की बातें होती हैं अराउंड हड़ताल का तीज. एंड जनरली आप अपने दोस्तों के साथ, महिलाओं के साथ मिलकर मनाने का ये त्यौहार भी है. इसको पुराने समय से ही तीज में महिलाएं जो हैं साथ में बैठकर गीत गाती हैं, लोकगीत जो होते हैं, एंड झूले झूलती हैं, मेहंदी लगाती हैं, एक दूसरे को श्रृंगार करती हैं. एंड दैट्स द फन ऑफ हड़ताल का तीज, कि सब सखियां, सहेलियां, सब लेडीज, ननद, जेठानी, सास, सब बैठ के साथ में कुछ वो पर्टिकुलर गाने होते हैं वो गाती हैं, उसी के साथ वो गौरा देवी की पूजा भी करती हैं एंड खूब सस्ती सवरती हैं. दैट्स द ब्यूटी ऑफ हड़ताल का तीज.

वेल दैट वॉज थारे बिना लागे नहीं मारा जिया रे। एंड जैसे कि मैंने कहा, कुछ लोग आज दौज मना रहे हैं, कुछ लोग आज हड़ताल का तीज मना रहे हैं, कुछ लोग कल हड़ताल का तीज एंड गणेश चतुर्थी भी मनाएंगे। सो यस, जो जब जब जहाँ मना रहा हो, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ बेस्ट विशेज। इट्स ऑलवेज फन टॉकिंग टू यू ऑल एंड प्लेइंग सम मेलोडियस सॉन्ग्स अलॉन्ग द वे। इट्स टाइम फॉर मी टू से बाय, बट आप कहीं जाइएगा नहीं, डू स्टे ट्यून्ड इन टू 104.9 FM फनेशिया रेडियो, एज यहाँ हमारे शोज आपको एंटरटेन करते रहेंगे। कमिंग अप नेक्स्ट इज नीलम। वेल, मैं जाते जाते ये जरूर कहना चाहूंगी कि बप्पा गणेश जी, आपका आना हमारे हम सबके घर को खुशियों से भर दे। गणेश चतुर्थी की आप सभी को शुभकामनाएं। दिस इज मधुलिका साइनिंग ऑफ।

104.9 FM फन एशिया रेडियो पे आप है मेरे यानी कि नीलम के साथ, और एक बार फिर से आप सबकी खिदमत में नीलम का प्यार भरा नमस्कार, आदाब एंड वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। इस धूप में आप जहाँ पर भी है, आपकी ग्रोसरीज की लिस्ट लेकर निकले हैं, आप सोच रहे हैं कि भाई लंबी सी लिस्ट है क्योंकि त्यौहार आ रहे हैं, बहुत कुछ लेना है ग्रोसरी स्टोर से, आई अंडरस्टैंड। घर की कुछ लंबी सी लिस्ट है, क्लीनिंग की, लॉन्ड्री, कुकिंग एंड वॉट नॉट, बच्चों को लेने कहीं जा रहे हैं, बच्चों को ड्रॉप करने कहीं जा रहे हैं, बस ऐसे ही लंच पर निकले, कोई बात नहीं। जहाँ पर भी आप है, मैं हूँ आपकी राहों की रहगुजर एवरी वीकेंड। साथ रहेगा आज आपका और हमारा इस म्यूजिकल जर्नी में 2 बजे तक, जहाँ पर हम आपके लिए गैर फिल्मी गाने लाते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं OTT प्लेटफॉर्म की सीरीज से लेके पाकिस्तानी ड्रामास की बातें करते हैं, प्राइवेट एल्बम, सूफी बैंड, गजल एंड रॉक फ्यूजन गाने, ये सारे गाने, सारी बातें, लेकिन गैर फिल्मी आपके साथ रहेगी, मेरे साथ रहेगी टिल 2 PM। एंड दिस इज 104.9 FM फन एशिया रेडियो, जहाँ पर होती है ये म्यूजिकल मुलाकातें एवरी वीकेंड।

एपोन के साथ रोंकिणी गुप्ता की आवाज़ तेरा चाव लगा जैसे कोई धागा लगा। वरुण ग्रोवन जी के बहुत ही खूबसूरत बोल के साथ ये गीत आपने सुना 104.9 FM फन एशिया रेडियो। वीकेंड्स में एक बात बिल्कुल बनती है कि हम कहीं ना कहीं मूवीज़ की तलाश में रहते हैं, राइट, कि क्या देखा जाए क्या देखा जाए, एंड स्पेशली ऑन OTT प्लेटफॉर्म। अब जब OTT की बात निकलती है तो रिव्यूज़ पहले से हमें मिल भी जाते हैं, हमें पता भी होता है कि कहाँ पर क्या देखा देख सकते हैं, ट्रेलर्स भी मिल जाते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन देखने के बाद कभी लगता है कि अरे यार चलता, इफ़ यू वुडंट यू नो स्किप दिस मूवी कि नहीं देखते तो। लेकिन जस्ट बिकॉज सबने कहा था देख लो, मूवी के रिव्यूज़ आए थे, देख क्या। सिमिलरली गांधारी में भी कुछ ऐसी ही बात है, विच आई वॉच्ड यस्टरडे। अगर आपने भी देखी होगी तो आपकी भी अलग राय हम बिल्कुल लेंगे ऑफ एयर। तो गांधारी एक ऐसी मूवी है जहाँ पर यू नो इट इज़ नॉट अ सस्पेंस, तो मैं आपको स्पॉयलर अलर्ट नहीं दे रही हूँ, लेकिन किडनैपिंग की कुछ बात है उसमें एंड चाइल्ड ट्रैफिकिंग की बात है। सबसे अच्छी इस फिल्म की जो बात है कि जहाँ तापसी पन्नू का कैरेक्टर है, जो माँ बनी है, अपनी आंखों की रोशनी खोज देती है, बट फिर भी वो कैसे खतरनाक एक्शन सीन्स करती है, एंड वेरी गुड इमोशनल परफॉर्मेंस एज वेल। इट इज़ जस्ट नॉट अबाउट द एक्शन सीन्स, एंड यू नो कहीं कहीं कहानी बहुत प्रडिक्टेबल बन जाती है, कहीं कहीं लगता है कि यू नो कुछ लूज एंड्स लगते हैं देखने के बाद कि रियली ऐसा हो सकता है क्या, एंड इट्स टू प्रडिक्टेबल, समटाइम्स द स्क्रिप्ट इज़ टू वेक, समटाइम्स द एडिटिंग इज़ नॉट क्रिस्प। लेकिन फिर भी इफ़ यू आर फैन ऑफ तापसी पन्नू, आपको लगता है कि कुछ अलग देखा जाए, तापसी पन्नू को देखा जाए, तो ज़रूर देखेगा। दैट इज़ गांधारी, रिलीज्ड ऑन नेटफ्लिक्स। एंड चलिए इसी से सुनते ये गीत फ्रॉम द फिल्म गांधारी।

तापसी पन्नू इन द फिल्म ओटीटी पर रिलीज हो चुकी है गांधारी, एंड आप बिल्कुल देख सकते हैं इफ़ यू आर फैन ऑफ तापसी पन्नू. एंड नॉट ओनली दैट, आई थिंक दैट अटेम्प्ट इज ऑफ कोर्स वेरी नाइसली डन, लेकिन कहीं कहीं आपको लगेगा कि चलता, यू नो, इट इफ दे वुडंट हैव शोन दैट काइंड ऑफ सीन्स एंड वगैरह वगैरह. बट आपकी सबकी अपनी अपनी राय होती है. वेल, कुछ ऐसी ही बातें होती है, गैर फिल्मी कहानियाँ, गैर फिल्मी बातें. व्हेन आई से गैर फिल्मी, इट इज़ जस्ट द फिल्म जो बॉलीवुड की होती है लेकिन नॉट रिलीज्ड ऑन द थिएटर, राइट? ओटीटी प्लेटफॉर्म की ज़्यादातर बात करते हैं हम. ज़्यादातर बात करते हैं प्लेटफॉर्म ऐसे जहाँ पर प्राइवेट एल्बम्स होते हैं, कुछ इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट की बातें होती है एवरी संडे. चलिए उमर ख्वाजा जी को याद कर ले. जी हाँ, कभी कभी हम ना चाहते हुए भी छोटे मोटे एक्सीडेंट्स में फंस जाते हैं. उस वक्त, उस दौरान, जहाँ पर आपके लिए और भी मसले होते हैं, उमर ख्वाजा कैन हेल्प यू टू फाइट विथ योर इंश्योरेंस कंपनी, एंड यू डोंट हैव टू पे अंटिल यू विन. सो फॉर अ फ्री कंसल्टेशन यू कैन कॉल 4693005046, एंड इट इज attorneyomar.com इज द वेबसाइट. वंस अगेन 4693005046. तो बातें होती रहेंगी, बातों के साथ हम आपके लिए गाने भी लाते हैं, कुछ ऐसे गाने, कुछ ऐसे बातें जो फिल्मी नहीं है, ऑन 104.9 FM फनेशिया एवरी संडे.

एक ऐसे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जिन्होंने हमेशा हमें अच्छा संगीत दिया है और नए नए कलाकार नई नई प्रतिभा दी है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ संजय लीला बंसाली की, जिनकी वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी हीरा मंडी, जिसे आपने ये गीत सुना, बरनाली चट्टोपाध्याय। शी वॉज अ सिंगर ऑफ दिस ठुमरी जो आपने सुनी, बहुत ही खूबसूरती से इसे पेश किया गया था। एंड यू नो संजय लीला भंसाली खूब इम्पोर्टेंट से कि वो गाते हैं, आई डोंट थिंक दैट ही सिंग्स, बट संगीत बहुत अच्छी तरह से वो समझते हैं। एंड दैट इज़ अ रीज़न दैट ही हैज़ कम्पोज मैनी ऑफ हिज ओन सॉन्ग्स, जो खुद अपनी फिल्मों के ही बनाते, जो गाने बनाते वो खुद कम्पोज भी करते। एंड नॉट ओनली दैट, आई थिंक ही इज़ समबडी हु लाइक्स टू गिव अपॉर्चुनिटी टू न्यू सिंगर्स, उन्हें प्लेटफॉर्म देते हैं, चाहे वो फिल्मों की बात हो चाहे वो सीरीज की बात हो। जैसे कि श्रेया घोषाल, ऑफकोर्स श्रेया घोषाल की आवाज़ हमने सुनी थी देवदास में पहली बार। सो सिमिलरली देर आर मैनी मोर सिंगर्स जहाँ पर उन्होंने हीरा मंडी में हर एक गज़ल में हर एक ठुमरी में एक नई आवाज़ हमें दी थी, एंड दैट इज़ श्रेया घोषाल हो या बरनाली चट्टोपाध्याय, संजय लीला बंसाली ऑन 104.9 FM।

0: मैं तेरी हो गई यहाँ ब्रोकन बट ब्यूटीफुल सीजन 2 से लिया गया थे गीत। विक्रांत मैसी थे इस सीरीज में, अगर आपने देखी होगी उनकी 3 या 4 सीजन आई थी, एंड दैट इज वंस अगेन ब्रोकन बट ब्यूटीफुल। लेकिन हेल्थ के साथ अच्छा नहीं लगता, जब हेल्थ में अगर कुछ भी हमें कोई भी बात हो, वीकनेस की बात हो या कोई भी और बीमारी, तो चलिए मैं आपके लिए एक अच्छा सा नाम आपको सजेस्ट करती हूँ, पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है कोई बात नहीं, इफ इट इज पैशन हेल्थ आउट ऑफ योर नेटवर्क कोई बात नहीं, यू कैन स्टिल स्टे कनेक्टेड टू अफोर्डेबल प्राइमरी केयर विथ पैशन हेल्थ केयर फॉर जस्ट $85 अ मंथ। ज्यादा जानकारी के लिए यू कैन कॉल 214-666-6259, दैट इज 214-666-6259, और यू कैन विजिट passionhealthphysicians.com। हमारी हेल्थ लेकिन पैशन उनका, फॉर एंटायर कम्युनिटी, दैट इज पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। चाहे प्राइमरी केयर विजिट्स की बात हो, फॉलोअप्स की बात हो या प्रिवेंटिव केयर, एक ही नाम पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। कुछ और भी गाने बाकी है, कुछ और भी वेब सीरीज की बातें बाकी है, कुछ पाकिस्तानी ड्रामास की बातें होगी, ये सारी बातें ये सारे गाने आप ही की खिदमत में रहेंगे टिल 2 PM ऑन 104.9 FM फन एशिया रेडियो। मैं हूँ नीलम, आपके साथ ही म्यूजिकल मुलाकात करती हूँ हर शनिवार की दोपहर 12 से 3 के बीच में, एंड ऑन संडेज 12 से 2 के बीच में। संडेज आप सुनते हैं 1 बजे तक मुझे गुजराती कार्यक्रम में, राइट आफ्टर दैट दिस इज द शो जहां पर बहुत सारी बातें होती है गैर फिल्मी टिल 2।
1: आर यू लुकिंग फॉर अ स्मार्टर अप्रोच टू रिड्यूसिंग टैक्सेस व्हाइल बिल्डिंग एंड प्रिजर्विंग वेल्थ? माय टाइम इक्विटी, अ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म लेड बाय CPA सुधीर पाय, ऑफर्स एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, स्ट्रक्चर्ड नोट्स, टैक्स एंड फाइनेंशियल प्लानिंग, रियल एस्टेट स्ट्रेटजीज, AI एंड लेट स्टेज प्री IPO opportunities and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
2: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
3: सुनो सुनो सुनो सारे मैकन्नी वाले सुनो, हाईवे 380 पर खुल गया है पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। अब एनुअल फिजिकल के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, सेम डे अपॉइंटमेंट के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं, और पूरे परिवार के भरोसेमंद डॉक्टर्स की तलाश भी खत्म। सुनो सुनो सुनो, स्वास्थ्य का नया ठिकाना पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, अब मैकन्नी में हाईवे 380 पर।
4: एनुअल फिजिकल्स, प्रिवेंटिव केयर, सेम डे अपॉइंटमेंट्स, क्रॉनिक डिजीज मैनेजमेंट और केयरिंग फिजिशियंस, सब एक ही जगह। कॉल टुडे और टेक्स्ट 214-666-6259।
5: जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था।
6: साइन मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया। सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स, और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंकवेट सर्विसेज भी। लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो, विजिट signaturecuisine.net। सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर।
7: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
8: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
7: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
8: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
7: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
8: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
7: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338। दैट्स 817-786-3338।
9: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है, तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
10: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
11: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
12: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
13: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी। जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
14: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
15: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
16: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
15: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
16: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
15: सच में सब संभालेंगे?
16: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
2: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. Vanessa Events, your celebration partner.
17: Hi, this is Vinay Pathak, and you're listening to me on Fun Asia Radio.

रात के अंधेरे में तुम ही हो नूर मेरे लिए, बहुत ही खूबसूरत ये गीत पाकिस्तानी ड्रामा से सुना आपने शहीदई से ऑन 104.9 FM फन एशिया, और मैं हूँ नीलम आपके साथ। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड अ वेरी वार्म वेलकम, प्यार भरा स्वागत आप सभी का। और इस नूर की जब बातें निकली है तो भाई बिल्कुल हमें तारा कमर्शियल एनर्जी को याद करना ही होगा। सिंस 2002 जी हाँ आपकी सेवा में है कमर्शियल एनर्जी के लिए विद कम्पिटिटिव रेट्स, रिलायबल सर्विस एंड कस्टमाइज्ड एनर्जी प्लान। TeraEnergy.com इज द वेबसाइट जहाँ पर

2002, जी हाँ, आपकी सेवा में है कमर्शियल एनर्जी के लिए विद कॉम्पिटिटिव रेट्स, रिलायबल सर्विस एंड कस्टमाइज्ड एनर्जी प्लान. taraenergy.com इज द वेबसाइट जहाँ पर आप जा सकते हैं उनकी रिलायबल सर्विस के लिए. वंस अगेन इट इज taraenergy.com और यू कैन कॉल 8444282808, दैट इज 8444282808. तारा कमर्शियल एनर्जी. और जब OTT प्लेटफॉर्म की मैं बात करती हूँ, बहुत सारी हमारी बातें होती है, रिकमेंडेशन आप भी हमें देते हैं, कुछ आपकी पसंद हमें बताते हैं, राइट? तो चलिए मैं आपको टॉप ट्रेंडिंग सीरीज की बात बता दूँ जो इस हफ्ते हो रही है कहीं पर भी, चाहे वो इट इज़ ऑन नेटफ्लिक्स या अमेजोन प्राइम. एंड यू नो देर आर सो मेनी डिफरेंट जोनर के भी पता भी नहीं चलता कि यार कितने कितने हैं. अमेजोन प्राइम भी है, ये है, वो है. खैर, अगर आप भी देख रहे होंगे तो आपको पता होगा. सो टॉप 5 जो है इस हफ्ते, उसमें नंबर 1 इज सफ़ेद सागर, विच इज़ अ वॉर ड्रामा, पेट्रोटिक वॉर ड्रामा है. और उसमें जिमी शेरगिल को भी आप देख सकते हैं विद अभय वर्मा. तो 1999 में जो कारगिल युद्ध हुआ था उसके दौरान जो भारतीय वायुसेना की बात है, एंड मैनी मैनी मोर थिंग्स, इट्स लिटिल बिट ड्रामेटिक एज वेल, जो है नंबर 1 पे टॉप ट्रेंडिंग, एंड इट इज सफ़ेद सागर. और भी हो गए बिल्कुल, आपको बताऊंगी, लेकिन कुछ गाने भी हो जाए. एंड यू नो ये जो सिंगर है उसके लिए मैं काफ़ी, मैंने आपके साथ जिक्र किया है, एंड वेरी वेरी उभरते कलाकार, जहाँ उभरते, आई थिंक उभरना उनका स्टेज खत्म हो गया है. ही इज़ राइट देयर नाउ, ही इज़ लाइक ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग. और बहुत सारे अच्छे अच्छे उनके एल्बम्स वो निकाल रहे हैं. अलॉन्ग विद दैट उन्हें अच्छे अच्छे इन्विटेशन मिलते हैं, जैसे कि कोक स्टूडियो भारत. सो कोक स्टूडियो की एक बात बताना चाहूँगी. इनिशियली दे यूज टू हैव कोक स्टूडियो इंडिया, बट देन दे चेंज द नेम टू कोक स्टूडियो भारत. आदित्य रिखारी की आवाज में

क्या बात है गत्ते खान साहब जी। हाँ, उनकी आवाज़ के साथ थी आदित्य रिखरी की आवाज़ ऑन कोक स्टूडियो भारत। और जैसे कि मैंने कहा, कोक स्टूडियो ने अपना नाम बदल दिया है एंड नाउ इट इज़ कोक स्टूडियो इंडिया से लेकर कोक स्टूडियो भारत बन गया है। टॉप 5 ट्रेंडिंग सीरीज़ की मैं बात कर रही थी, तो उसमें बिल्कुल सफ़ेद सागर है टॉप ट्रेंडिंग है। उसके साथ एक और भी है, सारे जहाँ से अच्छा, ये भी एक सस्पेंस थ्रिलर है लेकिन इट सीम्स लाइक मोर लाइक अ पैट्रियोटिक सीरीज जो हम कहते हैं। ग्राम चिकित्सालय इट्स नॉट वेरी मच, एकदम हल्की फुल्की कॉमेडी टाइप की है, जहाँ पर कुछ लाइफ की बातें हैं, परिवार की बातें हैं, छोटे से गांव, छोटे से कस्बे की बात है। एंड बकेती इज़ ऑल्सो टॉप ट्रेंडिंग, दैट इज़ अ कॉमेडी ड्रामा जिसमें है शिवा चड्डा और उनके साथ है राजेश तैलंग। तो ये सारे ड्रामाज जो है, एंड यस देयर इज़ वन मोर जिसका नाम है द रेवोल्यूशन, और ये भी है टॉप ट्रेंडिंग में। तो बस ऐसे ही सीरीज़ की बात करते हैं, वेब सीरीज़ से लेके पाकिस्तानी ड्रामा से लेके प्राइवेट एल्बम से लेके कुछ उभरते हुए कलाकार, कुछ नए नए कलाकार, और इन सारे आवाज़ों के साथ, सास की बातों के साथ, मैं हूँ नीलम आपके साथ एवरी वीकेंड।

मानू और अनुराल खालिद की आवाज़ में ये गीत आपने सुना ऑन 104.9 FM फन एशिया रेडियो. यू नो, जब भी हम ऐसे गाने सुनते हैं, जब भी कुछ नई आवाज़ें सुनते हैं, एंड आई वुडंट से नई आवाज़ें, ऑफ कोर्स दे हैव बीन सिंगिंग फॉर अ वाइल, लेकिन नॉट सो फ्रिक्वेंट, जहाँ पर हम ऐसी आवाज़ें नहीं सुनते बार बार, तब लगता है कि कहीं ना कहीं हर कोने में, हर गली में अच्छी टैलेंट होती ही है. स्पेशली अगर आप राजस्थान की बात कर ले, इससे पहले हमने जो गीत सुना था आदित्य रिखारी के साथ, कट्टे खान साहब की आवाज़ है, वैसे ही मम्मी खान करके भी है एक राजस्थानी सिंगर जिन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे इंडी पॉप फ्यूजन में अपनी आवाज़ें दी है. एंड यू नो, इफ़ यू गो टू राजस्थान या कहीं पे भी गांव में, जो मिट्टी की खुशबू के साथ उनकी जो आवाज़ें होती है, देर आर सो मैनी सिंगर, देर आर सच ए ब्यूटिफुल टैलेंट एवरीवेयर अराउंड अस, लेकिन कभी कभी लगता है कि उन्हें राइट प्लेटफॉर्म नहीं मिलता. जहाँ पर वो होने चाहिए वो नहीं होते, फॉर वॉट एवर रीज़न, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी है, विच इज़ नॉट गेटिंग पॉपुलर, जहाँ पर उन्हें वो मौके नहीं मिलते. अगर मौके मिल भी जाए तो कंपटीशन इतनी होती है कि वो आगे आ नहीं सकते. देर कुड बी मल्टीपल रीज़न, लेकिन खैर हमारी कोशिश होती है यहाँ पर एटलीस्ट एवरी संडे कि अगर कुछ अच्छा मैं सुनती हूँ, अच्छी आवाज़ें मैं सुनती हूँ, तो बिल्कुल प्रस्तुत करती हूँ आपके लिए यहाँ पे एवरी वीकेंड. और अच्छी आवाज़ से मुझे याद आ गई है सोनू निगम जी की आवाज़ जी, बिल्कुल कौन भूल सकता है उनकी आवाज़ को. सोनू निगम को आप लाइव सुन सकते हैं September 26th at 8:30 PM एट क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर इन एलन. वंस अगेन, दैट इज सोनू निगम लाइव हियर इन डालस. For more information, you can call 855-360-SHOWS. That is 855-360-SHOWS. जैसे बॉलीवुड की गॉसिप होती है भाई, वैसे OTT प्लेटफॉर्म की भी गॉसिप होती है. नॉट रियली गॉसिप टाइप, लेकिन कुछ नई खबरें भी होती है कि कौन से चैनल पे क्या हो रहा है, कौन से चैनल मर्ज हो रही है, वगैरह वगैरह. तो एक बड़ा मर्ज हुआ है जिसकी मैं आपको कुछ बातें बताऊंगी इस गाने के बाद.

करण अलुजा की आवाज में सुना आपने ये पंजाबी ट्रेंडिंग सॉन्ग ऑन 104.9 एफएम फनेशा रेडियो, और इससे मुझे एक बात याद आ गई जो मुझे आई हैव टू शेयर इट विथ यू ऑल ऑफ यू गाइस. सो यस्टरडे आई वाज लिसनिंग टू KERA समटाइम्स फॉर द न्यूज, राइट? एंड ऐसे ही मैं बात सुन रही थी व्हाइल आई वाज गोइंग बैक फ्रॉम माय शो, आफ्टरनून शो में न्यूज के लिए. दे हैव दिस BBC शोज एंड वट एवर नॉट, एंड सडनली आई हर्ड पंजाबी भांगड़ा म्यूजिक. सो आई फॉर अ सेकंड आई वाज लाइक, इज इट द राइट चैनल? मैंने कहीं चैनल बदल तो नहीं दी, बट एक्चुअली दैट वॉज अ फीचर और अ स्टोरी ऑन अ BBC रेडियो जहाँ पर दे वर टॉकिंग अबाउट दिलजीत दोसांझ. जी हाँ, दिलजीत दोसांझ की बात हो रही थी कि हाउ अ बिग स्टार ही इज़ इवन इन UK एंड एवरीवेयर ऑल अराउंड द वर्ल्ड. उनके एल्बम्स की बातें हो रही थी, उनकी उन्होंने जो मूवीज प्रोड्यूस की है उसकी बातें हो रही थी, एंड यू नो एवरीथिंग अबाउट हिज करियर, हिज फिल्म्स, हिज प्लान्स फॉर हिज अपकमिंग प्रोजेक्ट. इट वाज लाइक ऑलमोस्ट 10-15 मिनट फीचर ऑन हिम, एंड आई वाज लाइक वाओ दिस इज़ सो ग्रेट, राइट? कि हमारे जो आर्टिस्ट है, फॉरगेट अबाउट इंडियन की कॉन्टिनेंट पे या US में या कैनेडा में, जहाँ जहाँ इंडियन कम्युनिटी है या और भी हमारी साउथ एशियन कम्युनिटी है वहाँ पे पॉपुलर है, इट इज़ नॉट दैट. दे आर पॉपुलर इन एवरी स्ट्रीम, इन एवरी एरिया. एंड ये जो वक्त है, ये जो एक दौर चल रहा है जहाँ पर अगर आप अच्छा काम करेंगे, नो मैटर वेयर यू आर एंड वॉट लैंग्वेज यू आर सिंगिंग इन, जो भी आपका अच्छा काम होगा वो बिल्कुल चारों ओर जाता ही है फॉर वॉट एवर रीज़न, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, बिकॉज द वे द वर्ल्ड इज़ यू नो गेटिंग स्मॉलर. तो एक बहुत ही अच्छी, एंड इट वॉज अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर ऑल ऑफ अस कि देखिए हमारे आर्टिस्ट, इट इज़ जस्ट नॉट कि हमारे इंडियन शो या साउथ इंडियन कम्युनिटी शोज में ही उनकी पब्लिश होती है बातें, लेकिन इट इज़ गेटिंग एवरीवेयर. तो ऐसी बहुत सारी बातों के साथ मैं हूँ नीलम, लाती हूँ ये कार्यक्रम आपके लिए एवरी संडे. मर्ज की मैं बात कर रही थी ना, हाँ, तो चलिए वो भी बातें हम कंप्लीट कर रही थे. तो ये बात हुई है कि हॉटस्टार का नाम आपने सुना होगा और जियो सिनेमा का भी नाम सुना होगा. तो वेल, दे बोथ आर मर्जिंग नाउ, और दोनों ये जो बड़े प्लेटफॉर्म है, ऑफिशियली दे हैव अनाउंस्ड दैट दे आर गोइंग टू मर्ज एंड इट इज़ गोइंग टू बी जियो हॉटस्टार नाउ.

और इस गाने के साथ मैं नीलम लेती हूँ आप सभी से आज्ञा, अनुमति, इजाजत, मुलाकात होगी अगले शनिवार। तब तक के लिए कीप लिसनिंग एंड एंजॉयिंग फनी एशिया रेडियो।

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
3: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
2: नहीं।
3: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
2: नहीं।
3: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
2: वो भी नहीं।
3: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
4: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555. AG Fintax, your growth, our strategy.
5: AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
6: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
7: Bhook lagi
8: hai ya bas kuch exceptional khana hai?
9: Street style chaats, rich Awadhi flavors and that classic butter chicken you keep going back to. All under one roof at Page 3 Eatery. Honestly, ye sirf khana nahi hai. It's what your mood is actually craving.
8: A quick bite, a perfect lunch ambience and an evening that just flows into the night. You don't go just anywhere. You go to Page 3, Hub 121 McKinney.
10: अरे डेलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं। बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
11: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
12: Who are the employees your company simply cannot afford to lose? And are you doing enough to reward and retain them? An executive bonus plan using life insurance can be a flexible way to offer select key employees valuable protection today and potential future benefits later. To learn whether this strategy may fit your business, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution.
6: Product subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Consult qualified legal and tax professionals before implementing any business insurance strategy. Not legal, tax, investment or financial advice. Sadia.
13: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
14: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
15: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
16: तुमसे मिलके दिल का है।
14: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
15: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।

सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो।

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
3: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
4: Desi flavors bhi aur Texas ke favorites bhi. Ab sab kuch milega ek hi jagah. HEB mein. Sona Masuri Rice, Nanak Paneer, Pale Ji Biscuits aur bahut kuch. Wahi authentic swad jiske saath aap bade hue hain. Aur saath hi HEB ke exclusive Texan favorites jo aapko yahan pasand hain. अब एक ही शॉपिंग ट्रिप में ज्यादा काम निपटाइए और इस समर जरूर देखिए HEB के नए DFW स्टोर्स मिड सीरीज अर्विंग और मर्फी में खुल रहे हैं तो आज ही अपने नजदीकी HEB पर जाएं और खरीदिए अपने ट्रेडिशनल्स और टेक्सन फेवरेट्स HEB हियर एवरीथिंग इज बेटर
5: अरे वो केक आया क्या
6: डीजे कौन हैंडल करेगा
5: रिकॉर्ड वाले को कॉल किया
6: बैंड बजाने से पहले मेरा ही बैंड बज गया
5: रिलैक्स ऑसम इवेंट्स को कॉल किया
6: ऑसम इवेंट्स
5: हाँ भाई वेडिंग हो बर्थडे बैश कॉर्पोरेट गाला या फुल ऑन कॉन्सर्ट नाइट अमरीन हसनात एंड अ टीम विल हैंडल एवरीथिंग
7: मतलब प्लानिंग टू एग्जीक्यूशन टेंशन खत्म
5: नॉट जस्ट दैट बुक योर नेक्स्ट इवेंट एंड गेट फ्री प्रोफेशनल एमसीइंग बाय अमरीन हसनात हरसेल्फ
8: कॉल नाउ एट 214-725-7466 214-725-7466 and turn your celebration into an awesome event.
9: Dallas has its own superheroes. Fighting dust, clogs, blocked vents and hidden fire hazards every day. And now, the superheroes of ducts are turning one. Duct Time celebrates its first anniversary in Dallas. For Duct Time services, call Jeepu Patel at 972-877-2500 and book your appointment today for a cleaner, safer and fresher home.
10: हुजूर, आपको चुनना होगा हम या ये बिरयानी
11: बेगम मोहब्बत अपनी जगह लेकिन बिरिस्ता की हैदराबादी बिरयानी अपनी जगह
10: आखिर क्या है इस बिरयानी में
11: दम में नरमी मसालों में जादू और हर निवाले में नवाबी स्वाद
12: प्रेजेंटिंग बिरिस्ता हाउस बाय प्रिज्म बार एंड ग्रिल ऑथेंटिक हैदराबादी फ्लेवर्स एंड अ ट्रूली नवाबी एक्सपीरियंस नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स डिलीशियस डेजर्ट्स एंड मेनी मोर टू एक्सप्लोर डेंटन्स फेमस बिरिस्ता हाउस इज नाउ इन फ्रिस्को 6377 Custer Road, Frisco, Texas.
8: Happy hours, Monday through Friday from 3 p.m. to 7 p.m.
12: Barista House, richness of biryani bliss.
13: Beta, 95% aaye?
14: Haan, mummy.
13: Good. Ab chaliye, papa, aap apna report card dikhaiye.
15: Mera?
13: Haan. Profit margin, cash flow, tax planning, business goals. Sare accounts updated?
15: वो
16: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने AG FinTax helps you understand profitability, cash flow, tax planning, business growth through bookkeeping and CFO services. Visit agfintax.com. Call 972-618-8555. AG FinTax led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
17: Genie, hukam mere aka.
18: Hum aaj party ke mood mein hain. Ek aisi jagah batao jahan meri entry hi royal ho.
19: Miraj Lounge chaliye mere aka. Luxury limousine rides aapke intezar mein hain.
20: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं
19: नो प्रॉब्लम आका लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए
20: और एंटरटेनमेंट
19: मूवी नाइट बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स सब आपकी खिदमत में है
20: वाह जीनी ये जगह है या कोई जादू
19: जादू नहीं मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे मिरेकल्स हैपन इन मिराज
21: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है
22: दीवारा तेरा।
23: वही आ-
14: आवाज लेकर आ रहे हैं एक रेवोल्यूशन।
15: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
22: तुमसे मिलके दिल का है।
14: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
15: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।

playing the best tunes in all of Dallas. Fun Asia Radio, 104.9 FM.

0: कितने आदमी थे?
1: सरकार पूरा का पूरा डेलिस फनीशिया सुनता है।
2: आकर

0: moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
1: Call 857-891-8942 today.
2: अरे अरे अरे, डेलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं। बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स। कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
3: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
4: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
3: Kya matlab?
4: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
3: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
4: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
3: Ab to karna hi padega, madam.
5: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
6: हेलो, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं। एवरीवन्स आस्किंग लंच में क्या है?
7: फिकर नॉट, वी हैव द परफेक्ट सॉल्यूशन।
1: द फ्लेवर लाउंज इन फ्रिस्को ब्रिंग्स यू इट्स ऑल न्यू वीकेंड लंच बुफे, फ्रॉम फ्लेवरफुल इंडियन फेवरेट्स टू लाइव काउंटर्स एंड शेफ स्पेशल, 25 प्लस डिशेस, वेलकम ड्रिंक, चाट, एपेटाइजर्स, मेन कोर्स एंड डिजर्ट, सैटरडे टू संडे 12 PM टू 3 PM। This weekend, let the flavor lounge do the cooking.
8: Aaj se aaj, straight from the heart. Kal Hindi Hindi bol.
9: You know my voice on the radio. Now let me be a voice you can trust in real estate. Main hoon Navnita Khemka, realtor with Keller Williams Realty. Buying, moving or selling a home? I bring market knowledge, creative marketing and personal commitment to your journey. Because to me, real estate isn't just about properties. It's about you, mere dosto, your possibilities and your new beginnings. Every home has a story. Let's create yours together.
1: Call Navnita Khemka at 347-449-4242.
8: फोन उठाइए, नंबर दबाइए 347-449-4242।
10: सेम ऑर्डर अगेन, सेम पिज्जा, सेम टेस्ट, सेम स्टोरी। टाइम टू अपग्रेड योर क्रेविंग्स डैलस, बिकॉज फन पिज्जा किचन जस्ट ड्रॉप्ड अ बोल्ड न्यू मेक्सिकन इंस्पायर्ड मेन्यू एंड ट्रस्ट अस, दिस इज नॉट योर रेगुलर स्लाइस। फिएस्टा वेजी, पोयो लोको, सनो कैमरॉन, डिफरेंट नेम्स, क्रेजी फ्लेवर्स। वंस यू ट्राई दीज, योर ओल्ड ऑर्डर माइट जस्ट गेट घोस्टेड। फन पिज्जा किचन, न्यू फ्लेवर्स, न्यू ऑब्सेशन।
11: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस, चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस। पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए। चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही destination mein. Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.
12: Hi, this is Salim Merchant from Salim Suleiman, and you're listening to me on Fun Asia Radio.

इसी थॉट के साथ दोस्तों आप सभी को वेलकम करती हूँ। हेलो नमस्ते नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मजे में है ना? जी हाँ, मजे में तो रहना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि आप सुन रहे हैं नेशन का वन एंड ओनली वन फन स्टेशन फनीशिया रेडियो 104.9 FM, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर। दोस्तों मैं हूं आपकी होस्ट और आपके सुरीले सफर की साथी, आपकी अपनी अपूर्वा। वादे के मुताबिक आ गई हूं आप सभी को एंटरटेन करने। आज आपका और मेरा साथ रहने वाला है 4 बजे से लेकर 6 बजे तक, तो जुड़ जाइए इस 2 घंटे के खूबसूरत से म्यूजिकल सफर में मेरे साथ, यानी कि आपकी अपनी अपूर्वा के साथ। वैसे तो मेरा और आपका साथ रहता है दोस्तों एवरी संडे की शाम 6 से 8, बट कुछ कारणवश मैंने आपको बोला था कि अमरीन जी अभी छुट्टी पे है, तो उनको कवर करने में आ गई हूँ। तो दिस विल बी माय शो टाइमिंग फॉर टुडे। तो स्वागत है दोस्तों आप सबका आपके अपने शो में जिसका नाम है ये शाम मस्तानी। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, हमारी शाम मस्तानी, दीवानी, तूफानी, बेगानी, रेनी, फोगी, गर्मी वाली। जी हाँ, जैसे बहुत ही बहुत गर्मी वाली। कैसे भी हो, हमें तो अच्छी लगती है बहुत ही सुरीली और म्यूजिकल गाने ही। ऐसे चलते हैं यहाँ पर कुछ मेरे कुछ आपके पसंद के। और कल तो आने वाले हैं गणपति बाप्पा, तो ओ माय गॉड, पूरी की पूरी तैयारी। आई एम श्योर अगर आपके घर पे गणपति बाप्पा पधारते हैं तो आपने पूरी की पूरी तैयारी की होगी, एकदम ग्रैंड वेलकम उनका करने के लिए आप रेडी होंगे। तो चलिए अभी कुछ फिलहाल गणपति बाप्पा के गाने सुनते हैं और पूरे एटमोसफियर को स्पिरिचुअल बना देते हैं। लेट्स लिसन टू दिस।

गणपति बाप्पा मोरिया, ओ माय गॉड, क्या ताकत है दोस्तों इन सारे शब्दों में। बहुत ही अमेजिंग एटमॉस्फेयर छा गया है और बहुत ही एक अमेजिंग ताकत है गणपति बाप्पा के नाम में। आई एम श्योर आप सभी को भी यही रिलेट होता होगा और यही एक्सपीरियंस होता होगा। बहुत जोरों शोरों से तैयारियाँ चल रही है। ऑफकोर्स इंडिया में तो ओ माई गॉड बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग एटमोसफियर होता है। आई विश कि इस टाइम पर अगर हम इंडिया में रहे, बट अभी तो फिलहाल यूएस में भी लोग बहुत ही अच्छे तरीके से गणपति का फेस्टिवल मनाते हैं एंड इतने सारे इन्विटेशंस होते हैं कि क्या ही बताएं। बट नेवरदलेस इट इज़ एन अमेजिंग फेस्टिवल और गणपति बापा तो मेरे फेवरेट है। सो विशिंग एवरीबडी हैप्पी गणेश चतुर्थी इन एडवांस। तो चलिए अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी को बता देती हूँ दैट दिस पार्ट ऑफ आर शो इज ब्रॉट टू यू बाय एजी फिनटेक्स, विच इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टैक्स फर्म इन द यूएस। दे ऑफर इनोवेटिव फाइनेंशियल सर्विस with untapped potential for both individuals and businesses. They are trusted, efficient, and get you ready for the future. So you can call them. The number to call is 469-942-9888 or you can visit their website, which is agfintechs.com.

विशाल दादलानी की आवाज में दोस्तों सुन रहे थे आप ये गाना टेकन फ्रॉम द मूवी बैंजो। और अब बारी है दोस्तों आपको ट्रैफिक की अपडेट्स देने की। अभी अभी मैं देख रही हूँ दैट देर इज अ डिसेबल व्हीकल ऑन IH 35 ईस्ट सैंडी लेक रोड वाइट लॉक लेन नेबरहुड में, और वहाँ पे एक नॉर्थ बाउंड वहाँ पे एक डिसेबल व्हीकल है और सिवियरिटी ऑफ द इंसिडेंट हैज़ बिन रिपोर्टेड माइनर एंड ऑल्सो दैट इज़ द अपडेट। एंड ऑल्सो स्पर 408 IH 20 साउथ बाउंड पे एक कोलिजन हुआ है, द सिवियरिटी ऑफ द इंसिडेंट हैज बिन रिपोर्टेड मेजर, सो इफ यू आर ऑन दोज रोड्स प्लीज मेक श्योर दैट यू आर ड्राइविंग सेफली। एंड दिस ट्रैफिक अपडेट इज ब्रॉट टू यू बाय द लॉ ऑफिसर्स ऑफ उमर ख्वाजा। इंजर्ड इन अ कार ट्रक और अ स्लीप एंड फॉल एक्सीडेंट, यू कैन फोकस ऑन हीलिंग वाइल अटॉर्नी ओमर फाइट्स फॉर यू एंड यू पे नथिंग अनलेस ही विंस। सो यू कैन कॉल देम फॉर मोर डिटेल्स। द नंबर टू कॉल इज 4693005046 और यू कैन विजिट देयर वेबसाइट विच इज अटॉर्नी ओमर.com।

जुड़वा टू से सुनो थे दोस्तों आप ये गाना विच वॉज फीचर्ड ऑन वरुण धवन जैकलीन तापसी पन्नू.

डैलस के वासी ओ द वेट इज ओवर द पीएमजे ज्वेल्स इज नाउ ओपन इन फ्रिस्को। जी हाँ डैलस वासियों, द वेट इज ओवर, पीएमजे ज्वेल्स इज नाउ ओपन इन फ्रिस्को, ब्रिंगिंग ओवर 60 ईयर्स ऑफ ज्वेलरी एक्सेलेंस एंड टाइमलेस इंडियन क्राफ्ट्समैनशिप। एक्सप्लोर स्टनिंग गोल्ड, डायमंड एंड ब्राइडल कलेक्शंस फॉर एवरी सेलिब्रेशन एंड माइलस्टोन। प्राउडली एसोसिएटेड विथ महेश बाबू एंड सितारा गट्टमनेनी, पीएमजे इज अ नेम trusted by generations. Visit PMJ Jewels Frisco on Main Street and discover jewelry that tells your story. इसी अपडेट के साथ दोस्तों लेकर चलती हूँ आपको इस गाने की तरफ, और इस गाने के बाद आने वाला है छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। Stay tuned to 104.9 FM Fun Asia Radio. This is your host RJ Apoorva.

0: This Shravan, celebrate tradition with little extra sparkle. Shri Krishna Jewelers is celebrating 10 glorious years in Dallas with 10 exciting offers. Enjoy special gifts with qualifying purchases, from silver coins and gold studs to diamond studs and solitaire jewelry. Plus, exciting savings on gold and diamond jewelry. Make the Shravan extra special. Visit Shri Krishna Jewelers in Frisco now through September 17th. Shri Krishna Jewelers. 10 glorious years and countless sparkling memories.
1: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है, तो ये खबर आपके लिए। This summer enjoy 20% off on all appetizers, tandoori items and mocktails only at Tandoori Flame. Chicken tandoori, malai chicken tikka, paneer tikka, momo या सोया चाम अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। Dine in only at Tandoori Flame Garland, where every bite is a celebration.
2: Dallas has its own superheroes. Fighting dust, clogs, blocked vents, and hidden fire hazards every day. And now, the superheroes of ducts are turning one. Duct Time celebrates its first anniversary in Dallas. For Duct Time services, call Jeetu Patel at 972-877-2500 and book your appointment today for a cleaner, safer, and fresher home.
3: रेस्टोरेंट चूज करना हो गूगल रिव्यूज, होटल बुक करना हो गूगल रिव्यूज, लेकिन बच्चों के डॉक्टर की जब बात आए तो एक ही रिव्यू सबसे इम्पोर्टेंट होता है, माँ का रिव्यू।
4: इसलिए डॉक्टर फरहाद हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ DFW चाइल्ड मॉम अप्रूव्ड पीडियाट्रिशियन फॉर 4 कंसेक्यूटिव इयर्स 2023 थ्रू 2026। मीट डॉक्टर निशात फरहाद एट पैशन हेल्थ पीडियाट्रिक्स, सर्विंग फैमिलीज एट फ्रिस्को एंड ऑब्री, स्टार्टिंग एट द एंड ऑफ ऑगस्ट। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, बिकॉज एवरी हेल्थी स्माइल बिगिंस विद ट्रस्टेड केयर। कॉल 214-666-6259 एंड शेड्यूल योर अपॉइंटमेंट्स टुडे।
5: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय करूं।
6: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
4: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
7: इतना सब और प्राइस?
4: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
8: मैं।
9: पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था।
10: साइन मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया। सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स, और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी। लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो, विजिट signaturecuisine.net। सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर।
11: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
12: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
13: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
14: तुमसे मिलके दिल का है।
12: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
13: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।
15: जिंदगी के कई रंग, फनीशा रेडियो के संग।

जिंदगी के कई रंगों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए 104.9 FM फन एशिया रेडियो। दोस्तों स्टूडियो के घड़ी में हो चुका है 34 मिनट्स पास्ट 4। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है उन सभी को बता देती हूँ, आप सुन रहे हैं मुझे यानी कि आपकी होस्ट और आपके सुरीले सफर की साथी आपकी अपनी अपूर्वा को, और ये है आपका अपना शो जिसका नाम है ये शाम मस्तानी। वैसे तो एवरी संडे की शाम 6 से 8 रहता है आपका और मेरा साथ, बट आज का साथ बोनस हो चुका है क्योंकि अमरीन जी छुट्टी पे है और उनको कवर करने में आ चुकी हूँ यहाँ पर। तो चलिए भाई, विदाउट एनी फर्दर डिले आपको लेकर चलती हूँ अगले गाने की तरफ। अगले गाने की रिक्वेस्ट आई है हामिद साहब की तरफ से, तो अगर आपको भी कोई अच्छे गाने तड़कते भड़कते रिक्वेस्ट करने हैं, स्टूडियो का नंबर है 9722355555।

0: लिए काम करेगा।
1: आजा तुझे बतला दूं कि ये दुनिया कैसे झुकती है।

वांटेड मूवी से सुन रहे थे दोस्तों आप ये गाना जलवा हामिद साहब की रिक्वेस्ट पर. ऐसे ही धड़कते भड़कते गाने यहाँ पर चलते रहेंगे ओनली ऑन 104.9 एफएम फन एशिया रेडियो पर. मैं हूँ आपकी अपनी आरजे अपूर्वा. विद दैट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ट्रैक.

इस स्केल का, इस कैलिबर का और कोई मूवी डेफिनेटली आना चाहिए. आई एम ईगरली वेटिंग फॉर दैट. रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण एंड शाहिद कपूर पे पिक्चराइज पद्मावत मूवी से सुन रहे थे दोस्तों आप ये गाना. No health insurance or is Passion Health out of your network? Stay connected to affordable primary care with Passion Health Direct for just $85 a month. Your membership includes primary care visits, follow-up and preventive care, chronic disease and medication management, telehealth when appropriate, care coordination, plus 20% savings on eligible self-pay labs, imaging and diagnostic services. Call or text. जी हाँ, आप उनको कॉल और टेक्स्ट कर सकते हैं. द नंबर टू कॉल और टेक्स्ट इज 214-666-6259 और यू कैन विजिट देयर वेबसाइट विच इज passionhealthphysicians.com. पैशन हेल्थ आर पैशन, योर हेल्थ आर कम्युनिटी.

नेशन के फन स्टेशन फनिशर रेडियो 104.9 एफएम पर दोस्तों आप सभी का ब्रेक के बाद स्वागत है। दोस्तों यू आर लिसनिंग टू द फनिशर नेटवर्क ब्रॉडकास्टिंग नॉनस्टॉप बॉलीवुड एंटरटेनमेंट हियर ऑन 104.9 एफएम फन एशिया रेडियो एंड आल्सो ऑन 104.1 एफएम रेडियो कैरावान। मोर वैरायटी है, मोर चॉइसेस है और मोर फन भी है, ओनली अंडर वन नेटवर्क विच इज फनिशियर्स नेटवर्क। और दोस्तों मैं हूं आपकी होस्ट और आपके सुरीले सफर की साथी आपकी अपनी अपूर्वा। एवरी संडे की शाम वैसे तो 6 से 8 रहता है आपका और मेरा साथ, बट आज ये साथ 4 से 6 के बीच में होने वाला है। तो चलिए भाई 6 मिनट्स पास्ट 5 हो गए हैं स्टूडियो की क्लॉक में। विदाउट एनी फर्दर डिले आपका स्वागत करते हैं फिर से एक बार स्वैग के साथ।

Yes, CJ.

Well, well, well, financial listeners, here is your chance to win $10 off a billing of $50 only dining. And this offer is from Chandigarh Bites. And plus, you can enjoy this special thali from Monday to Friday with exciting new dishes rotating daily for lunch only. Located off of McDermott Drive in Allen, visit ChandigarhBites.com for more details. So, dosto, aapke liye Chandigarh Bites ki taraf se ek giveaway hai. Aapko $10 ऑफ मिल सकता है अगर आपका बिल $50 का हुआ है तो. और ये ऑफर डाइनिंग के लिए ही वैलिड है. अगर आप टू गो लेकर घर पे जाने का सोच रहे हैं और उसका आपका बिल $50 का होता है तो उस पे $10 ऑफ आपको नहीं मिलेंगे. अगर आप रेस्टोरेंट में जाके डाइन इन करके $50 का बिल अगर आपका होता है तो उस पे आपको $10 ऑफ मिल सकते हैं. दिस गिव अवे इज वैलिड फॉर दैट डाइन इन ऑफर ओनली. तो आपको मेरे सवाल का जवाब देना है. बहुत ही इजी पीजी सा सवाल है. ये अगला गाना मैं जो आपके लिए प्ले करने वाली हूँ उस गाने को सुनकर आपको मुझे बताना है कि कौन सी एक्ट्रेस है जो आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है. आज की तारीख है दोस्तों सितंबर ऑफ 13th ऑफ सितंबर 2026. सो ऐसी कौन सी बॉलीवुड की हीरोइन है जो आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है. इस गाने के बाद आपको मुझे इस गाने के दौरान आपको मुझे कॉल करना है. स्टूडियो का नंबर 9722355555. सही जवाब देने वाले को मिल सकता है $10 ऑफ ऑन अ बिलिंग ऑफ $50 only dine in from Chandigarh Bites. और गाना रहा ये. आपको मुझे बताना है कि कौन सी एक्ट्रेस है जिनका आज है बर्थडे.

लवली लवली ट्रैक दोस्तों, अलका याग्निक की आवाज में सुन रहे थे आप, टेकन फ्रॉम द मूवी धड़कन। और इंतजार की घड़िया खत्म हो चुकी है। जी हाँ, आज है बर्थडे महिमा चौधरी जी का। जी हाँ, टोटल 53 ईयर्स की हो गई है महिमा चौधरी जी। एंड 13 सितंबर 1973 में हुई थी इनकी पैदाइश। एंड टुडे शी कंप्लीट्स हर 53 ईयर्स ऑफ जर्नी एंड विशिंग हर अ वेरी वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। तो सबसे पहले जवाब मुझे जिन्होंने दिया था उनका नाम है मिस्टर संजय जी। तो संजय जी जीत चुके हैं चंडीगढ़ बाइट्स की तरफ से ये वाला गिव अवे। सो तालियां संजय जी के लिए। जी हाँ, बल्ले बल्ले हो गया है। सो चलिए, अभी महिमा चौधरी का बर्थडे सेलिब्रेट कर ही रहे हैं तो और एक गाना उनके ऊपर सुन लेते हैं। एंड लेट्स टेक द शो अहेड। और उसके बाद कई कई अच्छे अच्छे गाने सुनेंगे।

बागबान मूवी से सुनते दोस्तों आप ये गाना महिमा चौधरी पे पिक्चराइज था ये. और द रीजन वी प्लेड दिस सॉन्ग इज बिकॉज टुडे महिमा चौधरी इज सेलिब्रेटिंग हर 53rd बर्थडे. सो विशिंग हर अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे.

मोर म्यूजिक मोर मस्ती और मोर मैजिक के साथ दोस्तों आपको फिर से एक बार वेलकम करती हूँ। स्टूडियो की घड़ी में हो चुका है 35 मिनट्स पास्ट 5। बस कुछ चंद मिनटों का सफर बचा है दोस्तों आपका और मेरा, सो लेट्स मेक द मोस्ट ऑफ इट। मैं बोले तो आपकी अपनी अपूर्वा, विद दैट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ब्यूटिफुल ट्रैक।

सोनू निगम और श्रेया घोषाल की मखमली आवाज में दोस्तों सुने थे आप ये गाना टॉयलेट एक प्रेम कथा से। क्या आवाज है और क्या अंदाज है गाने का। अगर इसी आवाज को और इसी अंदाज को आपको लाइव देखना है, जी हाँ सोनू निगम को लाइव देखना है, तो प्लीज गेट रेडी फॉर एन अनफॉरगेटेबल नाइट ऑफ म्यूजिक, द वन एंड ओनली सोनू निगम लाइव इन कॉन्सर्ट, एक्सपीरियंस रिवोल्यूशन। सैटरडे को सितंबर 26 एट 8:30

मेरी नजरें तुमसे इश्क जताती हैं, कि मेरी नजरें तुमसे इश्क जताती हैं, कि तुमसे प्यार हमको किताबी है, कि तुम मेरी जो भी हो, जितनी भी हो, जैसी भी हो, मेरी हो, इतना काफ़ी है, इतना काफ़ी है।

ऑलराइट दोस्तों, इसी के साथ स्टूडियो की घड़ी में हो चुके हैं 5:50, यही कहूंगी वक्त हो गया है मेरे जाने का। बहुत बहुत शुक्रिया आज की शाम साथ निभाने का। दोस्तों आपके साथ से ये सफर बहुत ही खूबसूरत, सुरीला और सुहाना होता है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और ये फन एशिया रेडियो का स्टूडियो मेरी हैप्पी प्लेस है। यहाँ पर आकर मैं जितनी हैप्पी हैप्पी होती हूँ, उतना ही हैप्पी हैप्पी आपको बनाने की मेरी इच्छा आकांक्षा और मनोकामना रहती है। With that, live fully, love passionately and laugh loudly. लेती हूँ आप सबसे विदा इसी थॉट के साथ और करती हूँ नेक्स्ट संडे 6 to 8 PM के बीच मिलने का वादा। दिस इज योर होस्ट आरजे अपूर्वा साइनिंग ऑफ फॉर टुनाइट। दोस्तों हैव अ ग्रेट नाइट अहेड डैलस एंड हैव अ ब्यूटीफुल मंडे मॉर्निंग एंड द रेस्ट ऑफ द वीक अहेड। और गणेश चतुर्थी की सभी को फिर से एक बार ढेर सारी बधाइयां।

भाई हम कितना भी कंप्लेन कर रहे हैं हमारे DFW एरिया के बारे में, वी हैव दीज क्रेजी थंडरस्टॉर्म्स, वी हैव दिस क्रेजी हीट दैट वी आर स्टिल लिविंग थ्रू, बट यार वी हैव ऑल द कलर्स एंड ऑल द वाइब्स दैट वी मिस बैक होम. थोड़ा सा भी मिस होता नहीं है यार. अभी नवरात्रि के सारे सेलिब्रेशंस चालू हो भी चुके हैं यहाँ पे. देयर आर सो मेनी इवेंट्स हैपनिंग ऑल अक्रॉस DFW एंड ऑफ कोर्स टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ गणेश चतुर्थी. सो टू एवरीबॉडी इन डैलस हु सेलिब्रेटिंग गणेश चतुर्थी, अ वेरी वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी. गणेश चतुर्थी चा हार्दिक शुभेच्छा एज अ मुंबईकर. ये थोड़ा सा मेरे लिए बहुत स्पेशल है यार. इट्स अ वेरी इमोशनल फॉर अस दिस फेस्टिवल. ऑब्वियसली दिवाली, होली, सारे फेस्टिवल्स हमारे भारत के हमारे लिए स्पेशल है, बट दिस वन इज एक्स्ट्रा स्पेशल. एंड जो भी कोई मुंबईकर वहाँ पे सुन रहा है मुझे, वो अग्री करेगा यार. यार प्रेम भाई सही बोल रहे हो यार, क्योंकि बॉम्बे लिट्स अप एट अनदर लेवल ड्यूरिंग दी 7 to 11 डेज, राइट? एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट लालबाग चराजा और GSB, इट्स अबाउट दो स्मॉल पंडाल्स एज वेल, दो स्मॉल पंडाल्स इन योर सोसाइटीज, इन योर बिल्डिंग्स. Even those are amazingly amazing fun. अभी लालबाग चा राजा को ऑफकोर्स वो बहुत सारा स्पॉटलाइट मिल चुका है. हमारे सेलिब्रिटीज आते रहते हैं, हमारे पॉलिटिशियंस वहाँ पे आते रहते हैं, बट देर आर सो मेनी अदर पंडाल्स दैट डिजर्व द रिकग्निशन. एंड ड्यू टू सोशल मीडिया इट इज हैपनिंग. सो आई एम रियली रियली हैप्पी. सो हैप्पी हैप्पी गणेश चतुर्थी लेडीज एंड जेंटलमैन. कीप एम कमिंग. 972-235-5555 इज द स्टूडियो का नंबर. और इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे जाइए, हमें फॉलो कीजिए. इट्स कॉल्ड प्रेम जोशी पॉडकास्ट. DMs are open and we will give you a shout out. Next gana mujhe Saurav ne recommend kiya hai, Made in India by Alisha Chinoy. And I have to say this, ye gana agar hum na bajaye to hamara ye pop segment hai wo adhura reh jata hai. So here's your song, Made in India, the iconic Alisha Chinoy.

अच्छा वो ये स्टूडियो में कैमरा नहीं है लेडीज एंड जेंटलमैन, क्योंकि मैं भी हाथ जोड़ के डांस कर रहा हूँ अलीशा चिनॉय के साथ, और मैं इतना ग्रेसफुली नहीं कर सकता हूँ लाइक अलीशा चिनॉय। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक, दिस इज द संडे पॉप स्टेशन विद प्रेम जोशी। यूजुअली मेरा शो होता है 8 से लेकर 10 संडे को, बट आज थोड़ा सा स्केड्यूल में है शिफ्ट, तो इसलिए मेरा हो गया प्रिविलेज आप लग से जल्दी बात करने का। सो आई स्टार्ट माई शो अर्ली टूडे एट 6 PM। वो हैंग ऑन टू हाउ मच एवर वी कैन, but of course, thank you so much for tuning into Fun Asia. Please make sure you follow us on social media platforms. It's called Prem Joshi Podcast, PremJoshi Podcast. And back to back album ke gaane recommendations aa chuke hain. Ek bahut hi zabardast gana Tamesh ne recommend kiya hai, jo Sanjay ne bhi mere ko recommend kiya. Ji haan, Tamesh ji ne mere ko phone kiya 5 minute pehle. Main deewana hu Ganesh Hegde ka song recommendation ke liye. उसी 3 मिनट बाद ऐसा कोइंसिडेंस पहली बार हुआ है लेडीज एंड जेंटलमैन कि हमारे दूसरे कॉलर जो संजय है उन्होंने भी यही गाना रेकमेंड किया है। सो या तमेश एंड संजय ने रेकमेंड किया है ये गाना, आई विल बी प्लेइंग दैट। बिफोर दैट आई डू वांट टू मेंशन अबाउट something really important, because it's going to be impacting our lives, because most of us who come from India to the US, they are all tech professionals, right? So Dallas professionals, if you're feeling stuck or wondering if AI and workplace changes are leaving you behind, you can join the 4-time TED speakers and award-winning career coaches Shilpa and Kapil Kulukshetra for a powerful career growth workshop. Learn how to reposition your value, strengthen your leadership presence, and accelerate your career with clarity and confidence. It's happening in Dallas on September 19th. Register now at playitful.com/Dallas and start building your powerful career transformation story. Here's your song, ladies and gentlemen. Man.

0: डांस करते रहिए डैलस, हम आ रहे हैं आपके पास जस्ट आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक. कहीं जाएगा नहीं और फॉर अ फ्यू सेकंड्स. ऑलराइट, आई विल सी यू ऑन द अदर साइड.
1: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
2: Call 857-891-8942 today.
3: जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था.
4: साइन मिलना मुश्किल है लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया. सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स. और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी. लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो. विजिट signaturecuisine.net. सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर.
2: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
5: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास. 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में.
2: That magic removal हो, love and relationship issues हो, get trusted solutions with 100% privacy.
5: Thousands की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से. Now it's your turn. समस्या का पक्का समाधान एस्ट्रोलॉजर ईश्वर. Call now 9455270897 or visit astrologerishwar.com.
6: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान. myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस. और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स. 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा. विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338 4697343338. myfamilyhomeloan.com is powered by Loan Factory. NMLS 2025289. Licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
4: We need to talk.
7: अब क्या हुआ?
4: Nothing. It's not you.
7: Oh no.
4: It's the distance.
7: Distance? We live 10 minutes apart.
4: Arey, it's actually not you. It's that driving all the way for my Sal's Hot Chicken.
8: Irving, that long distance relationship is officially over. Sal's Hot Chicken is now in Irving. Your crispy chicken, loaded sandwiches and bold Sal's flavors just got a whole lot closer. Sal's Hot Chicken, Irving. Same obsession, less distance.
9: Dallas, are you ready? Jabu Times Group of Publications ab aa chuka hai digital media platform par. Kai million followers ke saath, both in English and Urdu. Led by the famous and fearless journalist Raja Zahid Akhtar Khanzada, jinhone apni kalam se social injustice aur corrupt practices ke khilaaf bharpoor awaaz uthai. Dallas aur duniya bhar ki taaza tareen khabron ke liye The Jagu Times available hai ek click par, thejagutimes.com. For more details and advertisement, contact Raja Zahid Akhtar Khanzada 682-551-6500. The Jagu Times Commission, Jagu bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Panacea.
10: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है.
11: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन.
12: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस.
13: तुमसे मिलके दिल का है.
11: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन.
12: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर. फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS. एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क.

Thank you.

0: सुनो सुनो सुनो
1: सारे मैकन्नी वाले सुनो, हाईवे 380 पर खुल गया है पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। अब एनुअल फिजिकल के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, सेम डे अपॉइंटमेंट के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं, और पूरे परिवार के भरोसेमंद डॉक्टर्स की तलाश भी खत्म। सुनो सुनो सुनो, स्वास्थ्य का नया ठिकाना पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, अब मैकन्नी में हाईवे 380 पर।
2: एनुअल फिजिकल्स, प्रिवेंटिव केयर, सेम डे अपॉइंटमेंट्स, क्रॉनिक डिजीज मैनेजमेंट और केयरिंग फिजिशियंस, सब एक ही जगह। कॉल टुडे और टेक्स्ट 214-666-6259।
3: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस, चोकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस। पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 amazing restaurants mein zabardast dining, aur agar break chahiye to luxurious sky tower aur relaxing spa aapka intezar kar rahe hain, to sirf lucky feel mat kijiye, lucky ban jaiye. Choctaw casino and resort Durant, entertainment, luxury aur excitement sab ek hi destination mein. Please play responsibly, must be 21 years or older to game.